कर्म योग कर्म को एक विज्ञान बना देता है, जिसके द्वारा हम यह जान सकते हैं कि संसार के समस्त कार्यों का सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। कर्म तो अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा, किंतु हमें सर्वोच्च ध्येय को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। कर्म योग का अर्थ है मौत के मुंह में भी जाकर बिना तर्क वितर्क किए सबकी सहायता करना। भले ही हम लाखों बार ठगे जाएं, पर मुंह से एक बात तक ना निकालो और तुम जो कुछ भले कार्य कर रहे हो उसके संबंध में सोचो तक नहीं। निर्धन के प्रति किए गए उपकार पर गर्व मत करो और ना उससे कृतज्ञता की आशा ही रखो। कर्म योग हमें शिक्षा देता है कि सबसे पहले हम स्वार्थपरता के अंकुर की बढ़ने के प्रवृत्ति को नष्ट कर दें, और हमें जब इसके दमन की क्षमता आ जाए तो मन को बस वही रोक लें। स्वार्थपरता की इन लहरों से उसे मत बह जाने दें। कर्मयोग हमें शिक्षा देता है संसार को मत छोड़ो, संसार में ही रहो, जितना चाहो सांसारिक भाव ग्रहण करो, परंतु वह अपने ही भोग के निमित्त हो तो फिर तुम्हारा कर्म करना व्यर्थ है।

नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं आपकी अपनी आरजे याजू। आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से आप सभी का दिल से स्वागत है। हमारे स्टूडियो के घड़ी के हिसाब से अभी सुबह के 5:56 हो रहे हैं और इसी के साथ शुरू हो चुकी है हमारे आज के प्रातःकालीन प्रसारण सभा। आज है साल 2024 जून महीने का सोमवार दिन और तारीख है 3। दोस्तों, इस खूबसूरत सुबह को आपके लिए और भी खास बनाने के लिए हम लेकर आए हैं ढेर सारी जानकारी, मनोरंजन और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें। और इस पूरे प्रसारण में मेरे साथ स्टूडियो तथा एशपीते में मौजूद है हमारी पूरी टीम, प्रसारण निष्पादक एल ताली और तकनीकी अभियंता एम जिर्दो। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए इस सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं आज सुबह के आने वाले प्रोग्राम्स पर। 6:10 दिन की शुरुआत होगी भक्ति गीत के साथ। भक्ति और सुकून भरे गीतों के साथ एक पॉजिटिव स्टार्ट मिलेगा। 6:40 सुनिए कालो डायलेक्ट न्यूज, अपने क्षेत्रीय समाचार अपनी भाषा में। 6:45 पेश है सुबह सवेरे, जहां योगा, एक्सरसाइज, हेल्थ टिप्स और मधुर संगीत के साथ एक फ्रेश शुरुआत होगी।

7:10 सुनिए आप बताने डायलेक्ट न्यूज 7:15 रहेगा मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम जहां मिलेगी लेटेस्ट जानकारी और लोकल न्यूज एक एंगेजिंग अंदाज

8:30 प्रस्तुत है नॉर्थ ईस्ट न्यूज पूर्वोत्तर की खास खबरों के साथ 8:40 सुनिए हेलो ईटानगर इन्फॉर्मेशन और म्यूजिक का एक परफेक्ट मिक्स। 9:00 फिर से हिंदी न्यूज।

0: 9:05 रहेगा इंग्लिश न्यूज, 9:10 एंजॉय कीजिए फिल्में गपशप, जहां होंगे बॉलीवुड अपडेट्स, मूवी रिव्यूज, ओटीटी रिलीजेस और एंटरटेनमेंट की बातें। 10:10 शुरू होगा रेडियो ऑन डिमांड, जहां बजेंगे आपके पसंद के गाने और स्पेशल रिक्वेस्ट। तो दोस्तों बने रहिए अरुण एफएम के साथ, क्योंकि यहां हर सुबह होती है खास। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
1: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक, नगर पालिका

नमस्कार दोस्तों, अभी अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब आप सुन पाएंगे भक्ति गीत, जहां आपको मिलेगी सुकून भरा एहसास। चलिए सुनते हैं भक्ति गीत।

दोस्तों आप सुन रहे थे भक्ति गीत या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है। अब आप सुन पाएंगे कालो श्रोताओं का कार्यक्रम।

हे आकाशवाणी इटानगर तनगादम रोगामजाब अमदागला लुयो पोलोग आलो लोम आरोगो घालो मेंकेन आबालोक मेलेन जिदाग नांगो मारियो मत मलोग गाली आलो ट्यूसडे ओगो एक भारत श्रेष्ठ भारत ग आरालो अगर हमने घर दाखला अरुणाचल प्रदेश स्टेट ग गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल के टी परनायक रिटायर्ड ओके मुग ओमिनी में पार्स लेडी ऑफ द स्टेट अनंगा परनायक मुन्या येलिक दुलिक दागला तेलंगाना सिक्किम ओके गोवा स्टेट गद ग स्टेट फाउंडेशन दे गुद हमने लोक बाबन ईटानगर लो उर्गा जाब लोदुम दागलो येलिक दुलिक तो ओगो एम्ब येलिक दुलिक दागला गवर्नर मु तेलंगाना सिक्किम ओके गोवा लोक गुमिन होइन गदमने वार्म ग्रीटिंग्स ओके बेस्ट विशेस एमसिन आगाम रो जाब जिलेन लासिन इतो ओके एम्ब आगाम जिलेन दागला गवर्नर मु मेनला उनु योब इलासिन आइग बूम हारेन ओगो नेतु तासाग लोक मोबाइल कुनाम गालगापो ओगो कल्चरल हेरिटेज अबाबा ओके हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट हेरिटेज एक नाबाबा गद्धी गिमसिन अलुब काकेन ब बब गबला येला जुका अनासिन याका जागो नीतम अब अब नामसिन तोम सिरतो ओक मलोग गाली आलो ओ कुदा जल जीवन मिशन 2.0 लोक प्रोग्राम अब हमने लोदुम दाग लो चीफ मिनिस्टर नरमे पेमा कंदो ओक पीएचई मिनिस्टर मामा नातुंग मुन्य येलुग दागला मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ओक गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अन्य बाकेंगो ब इदुम कादुम हिदाकला दोलु रिंगो लगा ब इस तिस हिगिम ने अलुब इकारुला जुका अमला एमओयू साइनिंगो इका ओक एक न अब हमने यूनियन मिनिस्टर पोल जल शक्ति सी आर पाटिल ओके मिनिस्टर ऑफ स्टेट बी सम्मना मुन्यासिन आलुक दागला अलरूबे मुदांग नाक एमलासिन तोलिक लासिन इकाकु ओके मलोगे गाले आलो ट्यूसडे ओगो न्यू दिल्ली बोलो भारत ग प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कार्यकर्ता रिहिनाम अबागो ले दागला गुगे अरुणाचल प्रदेश स्टेट होक स्कॉलर्स औम गोसिन प्रेसिडेंट ने कार्यकर्ता रिहितो अगर स्कॉलर्स आउम ग अमीन को डॉक्टर तुई रिबा असिस्टेंट प्रोफेसर असम डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी लोक डॉक्टर बानु लोया सीईओ आरयूबीसीआईसी आरजीयू लोक ओक डॉक्टर लाली लिंगपा साइंटिस्ट बी थ्रीम्स लोक ओक मलोग एकना दिन शुरू न कार्यक्रम हिनाम का प्रोग्राम अब एमने मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेवल एपीआर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का द इगमेंग तो तनगाद नुनु गालो मेंकेन आगोम हिम आकाशवाणी ईटानगर लोक क तपदु एंटी मलेरिया मंथ एएमएम 2026 अमदगला होक इनेकुन ग लोन आलो हुम्बर ओगो फॉर्मली ब लंच का एकना अब एमने पासिगत का म्युनिसिपल काउंसिल पीएमसी कॉन्फ्रेंस लो इतो ओक एक ने दिन शुरू ने प्रोग्राम एमने डिस्ट्रिक्ट विक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम का द ऑर्गेनाइज गतो ओक मुनुक कैंपिंग होक 30 तारीख लोब दोलू दोलू गद लो ओक पासीगत ग टाउन ग आरा लोक सेक्टर क्लोनी गद रूल सिन अवेयरनेस मेंटो मुतम नाम गदम ये एमदाग ओक एक न प्रोग्राम इदाग ओगो हुआ हुआ प्रतिन डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर्स इसियांग मिसेस ज प्रतिन म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स पासीगत म्युनिसिपल काउंसिल ओगो प्रोग्राम ऑफिसर्स ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट गद रूल ऑफ गदसिन इरगा जाबे ये लिखतो मलोग आलोलो थावांग टाउन लो लोमनाम जाबे ये दुकानदार अतनेसिन हेममाबे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस थावांग लोक गद ओक असिस्टेंट कमिश्नर काम टाउन मजिस्ट्रेट संगे नोरबु मुनु दुकान लोक प्लास्टिक बैग हमने लारे ngam toku ओक दुकान अतरु गद ग गद्दम ने चलान कतिला ओके मुनु अलग लोक आजे अमबे मुरको एमसिन लातो एगे 19 दुकान गोलो एमदाग ओके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गद के पेले लोक पोल पुइन पुम कोकु ओगो प्लास्टिक बैग एम हेदुहरा एमने जिन नायो का एमला दुकान गद्दम ने मेंसो गेला लेबेनी ओको तमाका मानो इवेन ना गद्दम कु अत गद्दम ने मोरिक मोगामला आजे अमबे एमसिन लाका राजीव गांधी यूनिवर्सिटी आरजीयू दिना योन यूनिवर्सिटी को कालासिन एकना अतिरलोक अलियारू न रैंक 14 पोजीशन लो आका सेंट्रल यूनिवर्सिटी याद को कादाग दे एक अतिरलोक आतुकु ओक हाईएस्ट रैंक पान यूनिवर्सिटी को इका नॉर्थ ईस्ट गिदा होक्सिन ओक एकना रैंक पानम एम कादु थादुकुला अरुणाचल प्रदेश स्टेट ग स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर पीडी सोना मुसिन मुकेन ज्यादा दगला मुक पेले लोक आगम रूब कोइक आगम मसिन जिका ओक कली अबालो अरुणाचल प्रदेश स्टेट होक पारा एथलीट मार्बम भोजने फिफ्थ पोजीशन पारा गेम्स आची
Nagoya 2026 in Japan lo kali doba amla darling gekba ogo ekna kali aba amne hok anyiga October pol toloka 18 to 24 tarik loba kali tadang nak amdag ok mu amne hamba darling kunam am kaktag dokla deputy chief minister chonamen mesin social media lo jilen dagla marbomne koi jada lasin ika ok weather abalo kudda Meteorological Center Itanagar Pele Lokke West Kameng, East Kameng, Kurunkume, Kamle, Lower Siang, Siang, Ok Upper Sivon Siri, Gad Rulo, Yo Nidokodia Majib Ode Dangnake, Ok Doidoyak Basin, Ide Dangnake, Umla Yellow Elardbe, Katom Tatom Lasin, Ika. Katanga Dahirga, Galomenken Agme, Agam.

नमस्कार ईटानगर आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर आप सभी सुन रहे थे कालो डायलेक्ट में समाचार। खबरों के सिलसिले के बाद अब वक्त हो चला है आपके दिन को एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी और एक नई उमंग से भर देने का। मैं हूं आपकी आरजी दोस्त याजू और इस सफर का हम सफर, और आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं आपके अपने मॉर्निंग शो सुबह सवेरे में। दोस्तों, सुबह का जो वक्त होता है ना, वो बिल्कुल एक कोरे कागज की तरह होता है। आप इस पर सुबह सुबह जो लिखेंगे वही आपके पूरे दिन की कहानी तय करेगा। अगर शुरुआत अच्छी है तो यकीन मानिए आपका पूरा दिन निखरा हुआ बीतेगा। आज की इस मॉडर्न दौर में, जहां हम सब बाग दौर में फाइल्स में मोबाइल स्क्रीन्स में इतने बिजी हो गए हैं, वहां हम अक्सर एक बहुत ही जरूरी चीज पीछे छोड़ देते हैं और वो है हमारे खुद की हेल्थ, हमारा शरीर। कहते हैं ना, सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो दुनिया की कोई भी खुशी आपको खुशी नहीं दे सकती। तो चलिए, आज की ताजा ठंडी सुबह में हम और आप मिलकर एक वादा करते हैं, खुद को फिट रखने का, खुद को अंदर से मजबूत बनाने का।

और जब अंदरूनी ताकत की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है योगा का। दोस्तों, योगा सिर्फ बॉडी को स्ट्रेच करना या मुश्किल पोस्चर्स बनाना नहीं है। योगा का मतलब है युग, यानी जुड़ना आपके माइंड, आपकी बॉडी और आपके सोल को एक अल्टीमेट कनेक्शन। जब आप सुबह उठकर योगा करते हैं तो आप सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, आप अपने अंदर की स्ट्रेस और एंजाइटी को एक्सहेल कर रहे होते हैं। चलिए आज के सेगमेंट में हम बात करते हैं कुछ ऐसे आसनास की जिसे आपको अपनी डेली लाइफ में जरूर शामिल करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य नमस्कार की। अगर आपके पास बिल्कुल वक्त नहीं है तो सिर्फ 5 से 10 राउंड सूर्य नमस्कार के कीजिए। इसमें 12 अलग अलग पोजेस होते हैं जो आपके हेड से लेकर तो तक पूरे बॉडी की मसल्स को टोन करते हैं, आपके स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करते हैं। इसके बाद आता है प्राणायाम, जैसे कि अनुलोम विलोम और कपालभाति। हमारे लंग्स को ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है और जब आप गहरे सांस लेते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम काम होता है, चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है और दिमाग शांत होता है। तो दोस्तों, कल सुबह से ही अपने घर के बरामदा में या टेरेस पर योगा मैट जरूर बिछा लीजिएगा। लेकिन अभी सफर बहुत लंबा है, आइए सुनते हैं आज की सुबह का पहला खूबसूरत और सुकून भरा गाना जो आपके दिल को छू जाएगी। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम और चल रहा है आपका अपना फेवरेट शो सुबह सवेरे। गाना सुनकर मूड तो फ्रेश हो ही गया होगा और दिमाग भी थोड़ा शांत हुआ होगा योगा की बातों से। तो चलिए, अब वक्त है थोड़ा मसल्स को एक्टिवेट करने का, थोड़ा स्टेमिना बढ़ाने का, यानी बात करते हैं फिजिकल एक्सरसाइजेस की। काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप हमसे योगा में एक जगह बैठा नहीं जाता, हमें थोड़ा डायनेमिक वर्कआउट पसंद है। तो दोस्तों, फिजिकल एक्सरसाइज आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए एक वरदान है। तो दोस्तों, फिजिकल एक्सरसाइज आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जिन्हें हम हैप्पी हॉर्मोन्स भी कहते हैं। यही वजह है कि एक्सरसाइज करने के बाद आपको अचानक बहुत खुशी और एनर्जी महसूस होती है। अगर आप जिम नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, हमारे ईटानगर का मौसम, यहां की हसीन पहाड़ियां और ये ठंडी हवाएं, ऐसे मौसम में सुबह उठकर ब्रिस्क वॉकिंग यानी तेज चलना ही आपने आप में एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। कम से कम 30 मिनट की वॉक आपके जॉइंट्स को हेल्दी रखती है और आर्थराइटिस जैसे बीमारियों से दूर रखती है। अगर आप थोड़े यंग हैं और स्टेमिना बिल्ड करना चाहते हैं तो जॉगिंग या रनिंग शुरू कीजिए। इससे आपका हार्ट रेट अप होता है और कैलोरीज बर्न होती है। जो लोग घर के अंदर रहकर वर्कआउट करना चाहते हैं, उनके लिए बॉडी वेट एक्सरसाइजेस सबसे बेस्ट है, जैसे कि स्क्वाट्स जो आपके लेग्स और लोअर बॉडी को स्ट्रांग बनाते हैं, पुशअप्स जो आपके चेस्ट और आर्म्स को स्ट्रेंथ देते हैं, और प्लैंक्स जो आपके कोर मसल्स को मजबूत करते हैं। याद रखिए दोस्तों, एक्सरसाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आप पहले ही दिन मैराथन दौड़ने लगे। शुरुआत हमेशा छोटे स्टेप से कीजिए। आज 10 मिनट कीजिए, अगले हफ्ते इसको 15 मिनट कीजिए। टारगेट ये होना चाहिए कि दिन भर में थोड़ा पसीना जरूर बहाए, क्योंकि जो पसीना सुबह बहता है वो दिन भर आपको बीमारियों से बचाता है। तो सुस्ती छोड़िए और थोड़ा सा बॉडी को मूव कीजिए। चलिए, इसी एनर्जी को बरकरार रखते हैं इस अगले गीत के साथ।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे। दोस्तों हमने योगा की बात कर ली, हमने ढेर सारे एक्सरसाइज भी की भी बात कर ली, लेकिन अब बहुत पुरानी और सच्ची बात है, एप्स आर मेड इन द किचन। यानी आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, जब तक आपका खाना पीना सही नहीं होगा तब तक आपकी हेल्थ 100% सही नहीं हो सकती। 80% आपकी डाइट होती है और 20% आपका वर्कआउट होता है। तो चलिए आज के इस आखिरी सेगमेंट में मैं आपको देने जा रही हूँ कुछ ऐसे विस्तार से हेल्थ और डाइट टिप्स, जिसे अगर आपने ध्यान से सुन लिया और फॉलो कर लिया तो आप हमेशा फिट रहेंगे।

पहला टिप है वाटर टेरेपी। हमारी बॉडी 70% पानी से बनी है। सुबह उठते ही बिना ब्रश किए कम से कम 1 से 2 ग्लास गुनगुना पानी पिए। यह आपके इंटरनल ऑर्गन्स को वेकअप कॉल देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करता है और बॉडी के सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। और हाँ, पूरे दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना ही पीना है। टिप्स नंबर 2 है ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग। बहुत से लोग सुबह जल्दी में अपना नाश्ता स्किप कर देते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है। आपका ब्रेकफास्ट सबसे हैवी और न्यूट्रिशन होना चाहिए, क्योंकि पूरी रात के फास्टिंग के बाद आपकी बॉडी को फ्यूल चाहिए होता है।

0: टिप्स नंबर 3, लोकल एंड सीजनल फ्रूट्स। नेचर ने हर सीजन के हिसाब से हमारे लिए फ्रूट्स बनाए हैं। हमारे अरुणाचल में कितने फ्रेश ऑर्गेनिक और लोकल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं। बाहर के पैकेट जूसेस या प्रोसेस फूड के पीछे मत भागिए, उनमें सिर्फ शुगर और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। लोकल खाइए, स्वस्थ रहिए। टिप नंबर 4, व्हाइट पॉइजन से दूर रहे। अपने डाइट में 3 चीजों को कम से कम करें, मैदा, शुगर और एक्सेस सॉल्ट। ये तीनों हमारी बॉडी के लिए धीमे जहर की तरह काम करते हैं। चीनी की जगह आप गुड़ या हनी का यूज कर सकते हैं। टिप्स नंबर 5 है डिजिटल डिटॉक्स बिफोर स्लीप। अच्छी हेल्थ के लिए 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, और अच्छी नींद तब आएगी जब आप सोने से 1 घंटे पहले अपने मोबाइल फोन को खुद से दूर रख देंगे। सुबह उठते ही पहले 30 मिनट तक नोटिफिकेशन मत चेक कीजिए, बल्कि उस वक्त को खुद को दीजिए। दोस्तों, ये छोटे छोटे बदलाव जब आप रोज करेंगे तो एक दिन ये आपकी हैबिट बन जाएगी और फिर आपकी लाइफ बदल जाएगी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और गुनगुनाते रहिए। चलिए शो सुबह सवेरे के इस हसीन सफर को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनाते हैं आज का आखिरी गाना। इसके बाद भी बातें जारी रहेगी, आप कहीं मत जाएगा। स्टे ट्यून टू अरुण FM।
1: Not bad.

0: Now just imagine, एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
0: नहीं नहीं, लड़का तो उससे भी बड़ा पागल, वरना उससे प्यार कैसे करता? और एक दिन चर्च में

0: See? You're a natural.
1: वो तो मैं हुई. अच्छा बाकी सब रिकॉर्डिंग में संभाल लेंगे. हाँ 100 लिए हैं.
2: Si Akaspani tana gerjero pla sero kata ne program ata mi meling bi sero nono kape japa tana puyu mi tapa kendo sero kata ne puyu luko yin si tusutung. Governor Lieutenant General retired KT Parnaik la First Lady Anaga Parnaik ni buyo Lok Bhavan Itanagar so Ek Bharat Shrestha Bharat Initiative ke daipa Telangana Sikkim la Goa ka State Foundation Day program mi mune. So Governor contribution binde mi asala mudne. मो अरुणाचल प्रदेश लैसे का स्टेट लो अटो ट्रेडिशनल ट्राइबल कल्चर मुझे मुमिलो में हम पर हिंदी बुदू सो टूरिज्म पत्र हम पर पोटेंशियल गुदो लहा लुको ने गवर्नर एक भारत श्रेष्ठा भारत के इनिशिएटिव गंदा दून लुका पोंसा पोंसा मुझे लुमे कासर गुदो पसी मुक दू लहा लुको ने चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ला पीएचईडी मिनिस्टर मामा नातुंग लुबियो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ला गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के जल जीवन मिशन 2.0 पा एमओयू साइन मुला का लाइव प्रोग्राम मिमोलो मुबोने सीएम खांडू सोशल मीडिया पोस्ट सो जल जीवन मिशन 2.0 यस लुक सप्लाई सर्विस में इम्प्रूव गया केंदो हो प्राइम मिनिस्टर के विकसित भारत मित्रों से मुची गुदोला हा लुको ने एमओयू साइन मुला का प्रोग्राम सो यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति सी आर पाटिल ला मिनिस्टर ऑफ स्टेट पी सोमन्ना लुत्रो दाने ला लुको दो बुयो न्यू दिल्ली सो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की स्पेशल इंटरेक्टिव मीटिंग में अरुणाचल प्रदेश के हिंगे स्कॉलर लुमु बने सो डॉक्टर टुई रिबा असिस्टेंट प्रोफेसर असम डॉन बोस्को यूनिवर्सिटी के डॉक्टर बानु लोया रूबिक के सीईओ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के और डॉक्टर लाली लिंगफा साइंटिस्ट भी ट्रीम्स होकर बोलू नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल ट्राइब्स होकर डॉक्टरल स्टडीज पीएचडी मुजाकुन लल्लू को दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लू वर्षा लिप्स इन न्यू भारत वीक जनजातीय गरिमा उत्सव का पार्ट पासी का मीटिंग में मग्ने यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री लु गंडा सो इबोला वायरस दोली के केस हंग पैमा लालू को दो मिनिस्ट्री ओक सिका इन्हें को निखाए लो आलो सो इबोला वायरस एफेक्टेड गंडा ओके इंगे खेनु मी आउ हेरुला अचिला अनि अचिला अक्साला हो आइलीला कम को हिमी अगोली मापा मी का अर्पो आ मापा और लोकल हेल्थ ऑथोरिटीज लो मिलू को दो पामु तो लालू दो हो मिनिस्ट्री ओक हंग इन्फॉर्मेशन गाइडेंस ला कायामोंडो पा हेल्पलाइन नंबर 1075 सो कॉल मुदो पाला हाल त्रोलो को ने मंडे आलोसो पसीगक म्युनिसिपल काउंसिल कॉन्फ्रेंस हॉल सो एंटी मलेरिया मंथ 2026 में फॉर्मली लॉन्च मुबने ई सियांगो के डिस्ट्रिक्ट वेक्टर बोर्न डिसीजेस कंट्रोल प्रोग्राम लोसे का प्रोग्राम में ड्रिवन टू एंड मलेरिया नाउ वी कैन नाउ वी मस्ट हल टीम में अदबने से का कैंपेन में जून 30 लोए अवेयरनेस ला एक्टिविटीज मुगला डिस्ट्रिक्ट सो मुकांग किंदो प्रोग्राम में का लॉन्च मुकोसो ई सियांग डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वाई वाई पर्टिन पसीगत म्युनिसिपल काउंसिल का म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिसेस जे पर्टिन हेल्थ डिपार्टमेंट का म्युनिसिपल प्रोग्राम ऑफिसर अतानलुसो आने लुकोदो बुयो तवांग के असिस्टेंट कमिश्नर कम टाउन मजिस्ट्रेट सांगे नोरबु डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिलीद मुगला तवांग डिस्ट्रिक्ट सो पोलिटिन केरी बैग बैन मुनमी एनफोर्स मुगला चेक मने सो पोलिटिन केरी बैग प्यून ला यूज मुला का ऑफिस ओदरता माने अलियाना को दुकान आता में चलन मुबने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लु तवांग में दर अच्छाला दुकान आतोला हो पब्लिक अतामी बेन ओदर मिता दोपाला तुन सर्बने सी आकाशवाणी ईटानगर जीरो उकला तपाला दो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी लो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लु का IIRF रैंकिंग सो 14 पोजीशन ओ आदो और नोटिस तो पसी तो पोजीशन ओ दो लुको दो सो एजुकेशन मिनिस्टर पीडी सोना से का अचीवमेंट आरजीयू का फ्रेटर्निटी लु

아야포리 위코파 헨리헨지 리서치 라 거버넨스 데디케이션 비코파 시 에체펜 몰 파이티 로코도 अरुणाचल प्रदेश के पारा एथलीट बोचेम और बोम मो मी जापान सो अक्टूबर 18 को 24 लोई का फिफ्थ एशियन पारा गेम्स आईची नागोया 2026 सो सेलेक्ट मुबने डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर चौना मेन सोशल मीडिया पोस्ट सो मरबोम में कंग्रेचुलेट मिला सीमो का डिटर्मिनेशन स्पोर्ट्स खेलियो का एक्सेलेंस को अचीवमेंट पाइबुदो लालू को दो मो में अरुणाचल प्रदेश ला गंदा का यूथ एथलीट लुत्रो का केंदो लालू को ने मेट सेंटर ईटानगर ओक वेस्ट कमेंग ईस्ट कमेंग कुरुंकुमे कमले लोअर सुबनश्री पपुमपरे वेस्ट सियांग सियांगला अपर सुबनश्री डिस्ट्रिक्ट लुपा येलो अलर्ट मुलिम्बुदो सिका डिस्ट्रिक्ट लुओ दोमिला दोया व्योकिंदो ललुको दो सिरो का तनुपुयुलु को सनेहम कने

नमस्कार, ईटानगर आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर आप सुन रहे थे आपातकालीन दैनिक में समाचार खबरों का सिलसिला के बाद अब वक्त हो चला है आपकी सुबह को ज्ञान संगीत और ढेर सारी ताजा जानकारियों से सजाने का। मैं हूं आपकी आरजे याजू और इस सफर का हम सफर और आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं आपसे आपके सबसे पसंदीदा मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट शो। दोस्तों, हर सुबह अपने साथ एक नए इतिहास लेकर आती है। आज तारीख है 3 जून। क्या आप जानते हैं कि आज का ये दिन हमारे दुनिया का इतिहास में कितना मायने रखता है? चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल हिस्ट्री की, यानी उन बड़ी घटनाओं की जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। आज 3 जून के दिन के नाम कुछ ऐसी बड़ी बातें दर्ज हुई है। आज ही के दिन साल 1989 में चाइना के बीजिंग में स्टूडेंट लेड प्रो डेमोक्रेसी डेमोन्स्ट्रेशन को रोकने के लिए वहां के मिलिट्री ने बड़ा कदम उठाया था। ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही चर्चित और महत्वपूर्ण इवेंट है जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया।

बॉक्सिंग की दुनिया के सबसे बड़े लेजेंड और सिविल राइट्स एक्टिविस्ट द ग्रेटेस्ट मोहम्मद अली ने आज ही के दिन साल 2026 में इस दुनिया को अलविदा कहा था। वो सिर्फ एक बॉक्सर नहीं बल्कि सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक बुलंद आवाज थे। यूरोप के नक्शे पर आज ही के दिन एक नया बदलाव आया था। 3 जून 2026 को मोंटेनेग्रो ने सर्बिया से अपनी 88 साल पुरानी यूनियन को खत्म करके खुद को एक आजाद और सवरेन देश घोषित किया था, जिसके बाद में यूएन ने भी इसे ही रिकॉग्नाइज किया।

स्पेस एक्सप्लोरेशन की दुनिया में आज का दिन बहुत बड़ा है। 1965 में नासा के जेमिनी 4 मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट एड वाइट ने स्पेस में पहली बार वॉक किया था। उन्होंने करीब 23 मिनट स्पेस के वैक्यूम में बैठे जिसने आगे के मून मिशन के लिए रास्ता साफ किया। इतिहास के पन्नों से निकलकर अब थोड़ा संगीत की दुनिया में चलते हैं। आइए सुनते हैं आज के सुबह का पहला खूबसूरत गीत।

हमारे शान गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को आज ही के दिन साल 1915 में ब्रिटिश किंग जॉर्ज पांच ने नाइटहुड यानी सर की उपलब्धि दी थी। हालांकि 1919 में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने ये बड़ा सम्मान ब्रिटिश सरकार को लौटा दिया था।

हमारी दरिया ताकत यानी इंडियन नेवी के लिए आज का दिन बेहतरीन है। 3 जून 1972 को उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने देश का पहला इंडिजिनसली बिल्ट मॉडर्न एज वारशिप INS नीलगिरी को कमीशन किया था, जिसने हमारी मैरिटाइम डिफेंस को एक नया मोड़ दिया। और हाँ, हम जो कॉरपोरेट और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वीकेंड का वेट करते हैं ना, उसकी शुरुआत आज ही के दिन 1985 में हुई थी, जब राजीव गांधी गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के लिए 5 डे वर्क वीक का रूल ऑफिशियली लाया था। इतिहास की ये बातें सच में हमें बहुत कुछ सिखाती है। चलिए, अब वक्त है शो को दूसरे गाने का। एक ऐसा ट्रैक है जो आपको अंदर से एनर्जी से भरा देगा। सुनिए और एंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक एक बार फिर से आप सभी का. आप सुन रहे हैं अरुण एफएम पर मॉर्निंग इंफोटेनमेंट. दोस्तों, कल क्या हुआ वो तो इतिहास है. आज हमारे आसपास हमारे अपने स्टेट में क्या चल रहा है ये जानना सबसे जरूरी है. तो चलिए ध्यान से सुनिए अरुणाचल टाइम्स की आज की बड़ी खबरें. द अरुणाचल टाइम्स की पहले हेडलाइंस है, आपसू सबमिट्स मेमो टू सीएम. सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन से. आपसू से एक डेलीगेशन ने चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू से मुलाकात की और उन्हें एक डिटेल मेमोरेंडम सबमिट किया है. इस मेमो में उन्होंने स्टेट की इंडिजिनियस लोगों के राइट्स, कल्चर और आइडेंटिटी को सेफगार्ड करने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है. उनका कहना है कि बदलते समय के साथ लोकल ट्राइबल आइडेंटिटी पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए और गवर्नमेंट को इस पर सख्ती से नए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स इम्प्लीमेंट करना चाहिए. एसीएफ सीसीएपी अपोज नोटिफिकेशन अंडर आफरा. अगली सुर्खी इंडिजिनियस लैंड राइट्स से जुड़ी है. अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम और कल्चर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने मिलकर गवर्नमेंट द्वारा आफरा यानी अरुणाचल प्रदेश फॉरेन राइट्स एक्ट के अंदर जो नया नोटिफिकेशन फ्रेम किया जा रहा है उसका खड़ा विरोध किया है. इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इस नोटिफिकेशन के आने से लोकल कम्युनिटी के जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट और लैंड राइट्स हैं उन पर बुरा असर पड़ सकता है. उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस नोटिफिकेशन को फिर से रिव्यू किया जाए और सभी स्टेक होल्डर्स से बात किया जाए.

गवर्नमेंट शंट्स आउट टू टॉप सीबीएसई ऑफिशियल्स, नेशनल लेवल से एक बड़ी और हैरानियाजनक खबर है। एजुकेशनल मिनिस्टर एंड और गवर्नमेंट ने एक बड़ा और स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के दो टॉप ऑफिशियल को तुरंत उनके पद से शंट आउट दिया है। मामला एग्जाम्स और एडमिनिस्ट्रेशन में इरेगुलरिटीज से जुड़ा बताया जा रहा है। गवर्नमेंट ने इस पूरे मैटर पर एक हाई लेवल इंडिपेंडेंट प्रोब के ऑर्डर्स दे दिया है ताकि सच सामने आ सके और अकाउंटेबिलिटी तय की जा सके। डिमांड टू रिकॉग्नाइज पीआई एदा मोयोंग एज मार्टियर। लोकल हिस्ट्री और परिवार के जज्बात से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर। लेट पॉलिटिकल एंटरप्रेटर एदा मोयोंग, जिन्होंने 1962 के इंडो चाइना वार के दौरान देश के लिए अपना सब कुछ दान कर दिया था, उनके डिसेंडेंट्स ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुख जताया है। उनका कहना है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी स्टेट गवर्नमेंट ने अब तक उन्हें ऑफिशियल मार्टियर का दर्जा या रिकॉग्नाइज नहीं दिया है। तो श्रोताओ, अरुणाचल की सुर्खियों में आज बस इतना ही। आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है। अब आप सुन पाएंगे तागिन श्रोताओं का कार्यक्रम।

0: गुड मॉर्निंग ईटानगर, आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर आप सुन रहे थे तागिन डायलेक्ट में समाचार। खबरों के सिलसिले के बाद अब वक्त हो चला है आपके इस ठंडी और भीगी सुबह को पुराने और सुनहरे गाने के साथ सजाने का। मैं हूं आपकी दोस्त आरजी याजू और इस सफर का हमसफर, और आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं आपके अपने पसंदीदा रेट्रो म्यूजिकल शो सदाबहार में। दोस्तों, आज की सुबह बाकी दिनों से बिल्कुल बाकी दिनों की जैसे बिल्कुल नहीं थी। आज अर्ली मॉर्निंग जो अचानक तेज गरज चमक और तूफानी हवाएं चली है, सच बताऊं तो एक बार के लिए मैं भी डर गई थी। वो थंडरस्टॉर्म सच में बहुत स्कैरी था। खिड़कियों का कड़कड़ाना, तेज हवाओं का शोर और बादलों की वो भयानक गरज हमें याद दिलाती है कि कुदरत के आगे हम कितने छोटे हैं। बहुत से लोग जो गहरी नींद में थे वो अचानक इस तूफान की वजह से उठ गए होंगे। हर तरफ दरख्त हिल रहे थे और लग रहा था जैसे कोई बड़ा तूफान सब कुछ उड़ा ले जाएगा। मुझे जरूर बताइएगा कि आप जब सुबह ये तूफान आया तो आप क्या कर रहे थे उस समय। लेकिन दोस्तों, एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपकी सेफ्टी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। मौसम का मिजाज अभी बहुत बदला हुआ है और अनप्रेडिक्टेबल है, इसीलिए मेरे आप सभी से गुजारिश है कि प्लीज ऐसे सिचुएशन में बेवजह घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। अगर बहुत जरूरी काम ना हो तो अंदर ही रहे। अपने घर के सारे डोर्स और विंडोज को अच्छे से क्लोज रखें ताकि तेज हवाओं से कांच या बाकी चीजों का नुकसान ना हो। अपने इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस को प्लग आउट कर दे, क्योंकि लाइटनिंग यानी बिजली गिरने का खतरा ऐसे मौसम में सबसे ज्यादा होता है। अगर आप रास्ते में हैं तो किसी बड़े पेड़ या बिजली के खंभे के नीचे खड़े मत हो जाइए। सेफ रहिए दोस्तों, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। चलिए इस भीगी मौसम के मिजाज को और खूबसूरत बनाते हैं सदाबहार के पहले गाने के साथ, एक ऐसे नगमा जो इस मौसम में आपके दिल को सुकून देगा।
1: डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम और चल रहा है आपका अपना सदाबहार शो सदाबहार। गाना सुनकर पुरानी यादों में खो गए ना, लेकिन चलिए अब थोड़ा मौसम के हाल पर लौटते हैं क्योंकि आज मौसम पर नजर रखना बहुत जरूरी है। आइए बात करते हैं हमारी कैपिटल सिटी ईटानगर के वेदर अपडेट की। सुबह की उस भयानक थंडरस्टॉर्म और तेज झटके के बाद अब ईटानगर का आसमान पूरी तरह से काले और घने बादलों से घिरा हुआ है, यानी कंप्लीट ओवरकास्ट कंडीशन बनी हुई है। धूप निकलने के चांस आज बिल्कुल ना के बराबर है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो आज दिन भर का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो गिरकर करीब 27 से 28 डिग्री सेल्सियस तक ही जाएगा, जो कि आम दिनों से काफी कम है। और सुबह की इस जबरदस्त बारिश की वजह से मिनिमम टेम्परेचर गिरकर 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे मौसम में एक अच्छी खासी ठंडक और सुकून आ गया है। एसी और फैन चलाने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी का लेवल बहुत ज्यादा, लगभग 92% चल रहा है। इसका मतलब यह है कि हवा में पानी की बूंदें बहुत ज्यादा है, और अगर थोड़ी देर के लिए बादल छाते हैं जाते हैं और हल्की धूप आती है तो अचानक बहुत ज्यादा उमस महसूस हो सकती है। अगले कुछ घंटों में या दोपहर के वक्त फिर से तेज गरज के साथ लाइट टू मॉडरेट रेन देखने को मिल सकती है।

हवा की रफ्तार अभी 18 किलोमीटर पर आवर की चल रही है, जो बीच बीच में तेज झटकों में बदल रही है। तो अगर आप गंगा मार्केट, ईटा फोर्ट या कैपिटल कॉम्प्लेक्स के किसी भी एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं तो अपनी गाड़ी की रफ्तार धीमी रखें। रोड पर पानी जमा हो सकता है, स्लिपरी कंडीशन हो सकती है और विजिबिलिटी यानी दूर तक देखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन रखें और सेफ ड्राइव करें। चलिए मौसम की इस बारात में एक और बेहतरीन सदाबहार गाना शामिल करते हैं, जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएंगे। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर सदाबहार। इन पुराने गानों का जो नशा है ना, वो आज के नए गानों में कहां। हमने ईटानगर के मौसम की बात की, लेकिन हमारा प्यारा अरुणाचल प्रदेश इतना बड़ा है और यहां हर वैली और हर हिल का मिजाज अलग है। तो आइए बात करते हैं पूरे स्टेट के वेदर अपडेट्स की, जहां आज मौसम काफी हलचल बढ़ा है। सबसे पहले बात करते हैं प्लेन्स की, जो हमारे फुटहिल वाले डिस्ट्रिक्ट है, जैसे ईस्ट सियांग, पापुमपारे के बाकी इलाके नामसाई, चांगलांग और तिराप। वहां पर अगले 24 घंटों के लिए हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट दिया गया है। कुछ इलाकों में कल रात से ही नॉनस्टॉप बारिश हो रही है। इन जगहों पर जो लोकल नदियां और छोटे नाले हैं, उनका पानी का लेवल अचानक बढ़ सकता है, इसीलिए रिवर बैंक्स के पास रहने वाले लोग बहुत सावधान रहें और पानी के पास ना जाएं। अब चलते हैं ऊंचे पहाड़ी इलाकों की तरफ। तवांग, वेस्ट कामेंग, बोमडिला, जीरो और अंजाव जैसे डिस्ट्रिक्ट में टेम्परेचर काफी ज्यादा गिर चुका है। वहां ठंड अचानक बढ़ गई है और साथ ही साथ घना कोहरा छाया हुआ है। फॉग इतना ज्यादा है कि सामने की रोड्स देखने में मुश्किल हो रही है। जो लोग बालुपुंग, तवांग रोड या बाकी हिली टेरेन्स पर ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें बहुत ध्यान से और धीमी ड्राइविंग करने होगी, क्या क्योंकि तेज बारिश की वजह से पहाड़ों से मिट्टी और पत्थर गिरने यानी माइनर लैंडस्लाइड का खतरा काफी बढ़ जाता है।

बाकी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में भी बादल पूरी तरह मंडरा रहे हैं और रुक रुक कर लाइटिंग और थंडर एक्टिविटी के साथ बौछारें पड़ती रहेगी। मौसम विभाग ने सभी को अलर्ट रहने को कहा है और बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाने की सलाह दी है। तो दोस्तों, मौसम चाहे कितना भी तूफानी हो या ठंडा हो, आपका और हमारा साथ हमेशा की तरह सदाबहार रहेगा। बस आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, घर के अंदर रहे, गर्म गर्म चाय और पकौड़े के मजे ले और अपनी फैमिली के साथ इस सुहानी मौसम को एंजॉय करें। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम। दोस्तों, ये था कार्यक्रम सदाबहार। आशा करती हूँ कि आपको ये कार्यक्रम बेहद पसंद आए होंगे। आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिव कुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
4: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डी के शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डी के शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। नवान्नों में दोपहर 12:30 उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक, नगर पालिकाएं और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काशफी नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला

0: प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
2: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
1: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
3: दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
1: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम

0: से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉक्टर रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, सीबीएसई चेयरमैन और सचिव हटाए गए, ओएसएम टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, 1 महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, सीबीएसई ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें ना विचारधारा की चिंता रहती है और ना ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल। अमर उजाला के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: गुड मॉर्निंग ईटानगर, आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर आप सुन रहे थे दिल्ली और शिलांग केंद्र से प्रसारित होने वाले महत्वपूर्ण समाचार। खबरों के सिलसिले के बाद अब वक्त हो चला है आपके इस खिली हुई सुबह को ढेर सारी जानकारियों, ज्ञान और संगीत से तरबातर करने का। मैं हूं आपकी आरजे याजू और इस सफर का हम सफर और आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं आपके सबसे दिलदार मॉर्निंग शो में। हेलो ईटानगर,
1: हेलो ईटानगर।

दोस्तों, हेलो ईटानगर का मतलब ही है एक नई सुबह, नए विचार और कुछ ऐसी बातें जो हमारे जिंदगी में पॉजिटिव चेंज लेकर आए। आज तारीख है 3 जून और आज का दिन पूरी दुनिया में एक बहुत ही प्यारी और हसीन चीज को डेडिकेट किया गया है। क्या आपने गेस किया? जी हाँ, आज है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, यानी विश्व साइकिल दिवस। हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके बचपन की यादें साइकिल से ना जुड़ी हो। वो पहली बार साइकिल चलाना, दोस्तों के साथ रेस लगाना, घुटने पर चोट लगना और फिर से खड़े होकर पैदल मारना। साइकिल सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि एक जज्बात है। आज जब हम बड़े हो गए हैं, गाड़ियों और मोबाइल्स में खो गए हैं, तो हम इस पुराने दोस्त को भूल गए हैं। लेकिन आज का शो हम इसी दो पहियों दोस्त के नाम करने वाले हैं। इसका इतिहास क्या है, ये कैसे शुरू हुआ, ये सब मैं आपको बताऊंगी विस्तार से। लेकिन पहले दिमाग को थोड़ा फ्रेश करते हैं एक बेहतरीन और खूबसूरत गीत के साथ, जो आपको सीधा आपके बचपन की गलियों में ले जाएगा। सुनिए और एंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम और चल रहा है आपका अपना फेवरेट शो हेलो ईटानगर। गाना सुनकर पुरानी यादें ताजा हो गई ना।

तो चलिए अब वक्त है थोड़ी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन का, यानी आज के दिन के इतिहास को गहराई से समझने का। बहुत से लोग सोचते हैं कि वर्ल्ड बाइसाइकिल डे तो सदियों पुराना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इस दिन को शुरू करने के पीछे एक ग्रास रूट्स कैंपेन थी, जिसे यूएस के एक सोशियोलॉजी प्रोफेसर लेसजेस्क सिबिल्सकी ने अपने स्टूडेंट के साथ साल 2015 में शुरू किया था। उन्होंने एक एकेडमिक प्रोजेक्ट किया कि कैसे एक सस्ती साइकिल गरीब से गरीब इंसान की जिंदगी बदल सकती है। उन्होंने यूएन यानी यूनाइटेड नेशन में इसके लिए बहुत एडवोकेसी की और उनकी मेहनत रंग लाई, जब अप्रैल 2018 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ऑफिशियली 3 जून को

अगर साइकिल के इन्वेंशन की बात करें तो इसकी कहानी और भी दिलचस्प है। सबसे पहली बार 1817 में जर्मनी के बैरोन कार्ल वॉन ट्राइस ने एक वॉकिंग मशीन बनाई थी जो लकड़ी की थी, लेकिन उसमें पैदल नहीं थे, लोग पैरों से धक्का देकर उसको चलाते थे। बाद में 1860s और 1880s में इसमें पैडल्स, चेन और रबर टायर्स जुड़े, जिसे सेफ्टी बाईसाइकिल कहा गया और वही आज की मॉडर्न साइकिल बनी। सोचिए, जिस साइकिल को हम इतना सिंपल समझते हैं, उसको आज ही के शक्ल में आने के लिए 2 साल लग गए। और माफी चाहूंगी, 200 साल लग गए। चलिए, इस शानदार जानकारी के बाद अब वक्त है शो के दूसरे गाने का, एक ऐसे ट्रैक जो आपके सफर को और हसीन बना देगा।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से आप सभी का। आप सुन रहे हैं अरुण एफएम और चल रहा है हेलो ईटानगर। दोस्तों बात करते हैं कि आखिर यूनाइटेड नेशन को साइकिल के लिए एक अलग दिन क्यों बनाना पड़ा, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। आज के दौर में जहां ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन सबसे बड़ी दिक्कत है, साइकिल एक ऐसी चीज है जिसमें ना फ्यूल लगता है ना धुआं निकलता है और ना ही ट्रैफिक जाम होता है। ये जीरो एमिशन ट्रांसपोर्ट है और हमारी हेल्थ के लिए अगर आप रोज सिर्फ 20 मिनट साइकिल चलाते हैं तो आपका हार्ट स्ट्रांग होता है, मसल स्टोन होती है और स्ट्रेस बिल्कुल गायब हो जाता है। अब आप पूछेंगे कि ये डे कहाँ होल्ड किया जाता है, तो दोस्तों इसका कोई एक स्पेसिफिक वेन्यू या शहर नहीं होता। ये प्योर ग्लोब यानी पूरी दुनिया में एक साथ हर देश, हर शहर और हर कस्बे में मनाया जाता है। आज के दिन न्यूयॉर्क से लेकर न्यू दिल्ली तक और हमारे प्यारे ईटानगर में भी लोग साइकिल रैलीस निकालते हैं, साइक्लोटॉन्स ऑर्गेनाइज करते हैं और बच्चों को सेफ साइकिलिंग के रूल सिखाते हैं। इस साल 2024 का ऑफिशियल थीम है साइकिलिंग फॉर ग्रीनर फ्यूचर, यानी हम जितना पैदल मारेंगे हमारा फ्यूचर उतना ही साफ और हरा भरा होगा। तो दोस्तों क्यों ना आज से हम भी एक छोटी सी शुरुआत करते हैं। अगर पास की मार्केट से सब्जी लानी हो या दोस्तों से मिलना हो तो बाइक या कार निकालने की जगह साइकिल उठाएं। एनवायरमेंट भी खुश और आपकी हेल्थ भी टॉप क्लास। इसी प्यारे से संदेश के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हेलो ईटानगर के इस सफर को यही रोकते हैं। अपनी गाड़ियों को स्लो चलाइए, रूल्स फॉलो कीजिए और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम। तो दोस्तों अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
2: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत

0: के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। पहले चरण में लाभार्थियों के बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू किया जाएगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावना है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन भी करेंगी। इस सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डॉक्टर खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉक्टर रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों का आपसी संपर्क बढ़ेगा और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। तीसरा और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। The acting president of Venezuela, Delcy Rodriguez, will be on a 5-day visit to India beginning today. She will be accompanied by a high-level delegation including ministers of foreign affairs, economy and finance, and science and technology. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said Ms. Rodriguez will hold bilateral discussions with Prime Minister Narendra Modi during her visit.
3: The discussions will involve full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues for further cooperation in the areas of energy, trade, investment, pharmaceuticals, healthcare, transportation, and renewable energy. India is an important partner of Venezuela in the areas of energy and investment. Indian public sector undertakings have made significant investment in Venezuela in the energy sector, and they are keen to explore more opportunities to further enhance their presence.
2: Karnataka is set for a leadership transition today when D.K. Shivakumar will be sworn in as the 25th Chief Minister. The 8-time MLA, popularly known as D.K. Shi, will take oath at 4.05 p.m. today at the Glass House in Lok Bhavan. A few cabinet ministers will also be sworn in by the governor today. After Siddaramaiah stepped down as CM on May 28, the Congress Legislature Party had elected 64-year-old D.K. Shivakumar as its leader, paving the way for him to assume the office. Congress leader Rahul Gandhi, National President Mallikarjun Kharge, Congress General Secretaries K.C. Venugopal and Randeep Singh Surjewala, religious leaders, labourers, writers, actors and prominent businessmen and industrialists have been invited for the swearing-in ceremony. Meanwhile, Congress has appointed senior Karnataka leader Siddaramaiah to its highest decision-making body, the Congress Working Committee, CWC. West Bengal government will launch a major social welfare initiative, Annapurna Yojana, today. Chief Minister Subhendu Adhikari will formally inaugurate the scheme. The launch will be a massive, synchronized event spanning the entire state. While the Chief Minister leads the central inauguration, beneficiaries of the Annapurna Yojana will participate virtually across all blocks, municipalities and municipal corporations. To ensure local participation, MLAs have been invited to attend the localized events, and the Chief Minister's main program will be broadcast via video conferencing directly to all block and municipal headquarters. India has welcomed the operationalization by Germany of the announcement waiving requirement of transit visa for Indian nationals transiting through Germany exclusively by air beginning today. External Affairs Ministry said that the announcement was made after discussions between Prime Minister Narendra Modi and the Chancellor of Germany, Friedrich Merz, during his visit to India in January this year. The ministry said that this new arrangement would further enhance people-to-people ties between India and Germany. Bangladesh's Foreign Minister Khalilur Rahman has been elected president of the 81st session of the UN General Assembly, UNGA. Dr. Rahman emerged victorious in a closely contested election held in UN General Assembly, garnering 99 votes against Cyprus's Special Envoy for Multilateralism, Andreas Kakouris, who got 91 votes. His one-year tenure as head of the Chief Deliberative, policymaking and representative organ of the United Nations will commence in September. UNGA President-elect Dr. Rahman said that he will uphold the world body's work on human rights and engage all member states during his tenure. External Affairs Minister S. Jayashankar has congratulated Dr. Rahman on his election as UNGA President. In a social media post, Dr. Jayashankar said that he is looking forward to working closely with Dr. Rahman to advance the shared priorities of India and Bangladesh and strengthen multilateral cooperation. In women's cricket, England sailed to a 6-wicket win over India in the third and final T20 international to clinch the series 2-1 at the County Ground, Taunton in England last night. India set a target of 181 runs against England. In reply, England scored 184 for 4 in 18.3 overs. And that is the end of this news bulletin.

गुड मॉर्निंग ईटानगर, आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से प्रसारित होने वाले महत्वपूर्ण समाचार। खबरों के सिलसिले के बाद अब वक्त हो चला है आपके इस चमकती सुबह को थोड़ा और ग्लैमरस, थोड़ा और चटपटा और बिल्कुल फिल्मी बनाने का। मैं हूं आपकी आरजे याजू और बॉलीवुड का सबसे बड़ा खबरी और आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम और मसलेदार और ग्लैमरस शो

दोस्तों, टिंसल टाउन यानी हमारी प्यारी बॉलीवुड की दुनिया में हर घंटे हर मिनट कुछ ना कुछ ऐसी हलचल होती है जो हेडलाइन बन जाती है। कहीं नई प्रोजेक्ट साइन हो रही है, कहीं सेट्स पर लड़ाइयां हो रही है, तो कहीं कोई नया ट्रेलर इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं और आपसे कोई खबर मिस हो गई है तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आज के इस मेगा एपिसोड में मैं आपको देने वाली हूँ बॉलीवुड के सारे ऑनगोइंग अपडेट्स, बड़ाई रास्ट गॉसिप्स, बड़े मूवी रिव्यूज और चल रही गरम गरम कॉन्ट्रोवर्सरीज की पूरी कुंडली असली नामों के साथ। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए दोस्तों, क्योंकि फिल्मी सफर शुरू हो चला है। लेकिन इस स्पाइसी सफर को आगाज करते हैं बॉलीवुड के एक सुपरहिट और धांसू गाने के साथ जो आपके मूड को बिल्कुल सेट कर देगा। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम और चल रहा है आपका अपना फेवरेट शो फिल्म में कपशप। गाना सुनकर पैर थिरकने लगे ना। चलिए अब बात करते हैं उन फिल्मों की जो इस वक्त बिग स्क्रीन यानी थिएटर्स में धूम मचा रही है और ऑडियंस का दिल जीत रहा है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आयुष्मान खुराना की फिल्म पति पत्नी और वो दो की। थिएटर्स में इसका तीसरा हफ्ता चल रहा है और अभी तक इसने वर्ल्ड वाइड 65 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुलप्रीत सिंह की ये फिल्म एक डिसेंट फैमिली एंटरटेनर साबित हो रही है। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख सकते हैं। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर असली हिस्ट्री बनी है वो है रणवीर सिंह और आदित्य धर की हाई ऑक्टेन एस्पियोनेज थ्रिलर फिल्म धुरंधर 2 द रिवेंज से। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी है और 1148 करोड़ का डोमेस्टिक नेट कलेक्शन करके इतिहास रचा है। अगर आपने इसको बिग स्क्रीन पर मिस कर दिया है तो ऐसी एक्शन थ्रिलर दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। चलिए इसी बॉक्स ऑफिस की गर्मी के बीच सुनते हैं आज का दूसरा सुपरहिट गाना जो हर किसी की फेवरेट है। सुनिए और गुनगुनाइए।

वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सुन रहे हैं अरुण एफएम पर फिल्म गपशप। दोस्तों, फिल्मों की बातें तो होती रहेंगी, लेकिन जब तक थोड़ी गॉसिप ना हो तब तक दिन की शुरुआत अधूरी लगती है। तो चलिए खोलते हैं बॉलीवुड का सबसे बड़ा खुफिया पन्ना।

इस वक्त बी टाउन की गलियों में सबसे बड़ी अफवाह और गॉसिप चल रहा है कल रात हुई एक फिल्म इवेंट से। कल कॉकटेल 2 का ट्रेलर लॉन्च इवेंट था जहां शाहिद कपूर, कृति सनोन और रश्मिका मंदाना पहुंचे थे। वहां जब मीडिया ने रश्मिका से उनकी फर्स्ट लव के बारे में पूछा तो उन्होंने शर्माते हुए कहा कि शी इज हैप्पीली मैरिड टू विजय देवरकोंडा। बस फिर क्या था, पूरे इंटरनेट पर इन दोनों की शादी और रिलेशनशिप की रूमर्स दोबारा गर्म हो गई है। दूसरी तरफ कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में रिकॉल किया है कि कैसे पुराने टाइम में जॉन अब्राहम ने उन्हें अपनी फिल्म का टाइटल भारत भाग्य विधाता बिल्कुल फ्री में दिया था। कंगना ने जॉन की बहुत तारीफ की है। चलिए इन चटपटी बातों के साथ सुनते हैं हमारा तीसरा गाना जो बिल्कुल इस गॉसिप मिजाज से मैच करता है।

आप सुन रहे हैं अरुण एफएम पर फिल्मी कपशप और मैं हूं आपकी आरजे याजू। दोस्तों, बॉलीवुड और कॉन्ट्रोवर्सीज का रिश्ता तो चोली दामन का है और इस वक्त सबसे बड़ी लीगल वार और कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है रणवीर सिंह और FWICE क्या यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज के बीच। मामला ये है कि रणवीर सिंह ने हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म डोंट ट्री को छोड़ दिया था, जिसके बाद FWICE ने उनके खिलाफ एक नॉन कॉपरेशन डायरेक्टिव इश्यू कर दिया था। अब खबर आ रही है कि रणवीर ने इसके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है और फिल्म बॉडी को लीगल नोटिस भेज दिया है। कंगना रनौत ने भी इस पर रियायत करते है कहा कि उन्हें तो पहले ही सबने बैन कर रखा है। दूसरी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है सुपरस्टार सलमान खान के घर से। सलमान खान की लीगल टीम ने फिल्म काला हिरन द बैटल फॉर लेगेसी के मेकर्स को एक कड़ी लीगल नोटिस भेजा है, क्योंकि उनका मानना है कि ये फिल्म सलमान के ऑनगोइंग ब्लैकबक पॉचिंग केस पर बेस्ड है। प्रोड्यूसर अमित जानी ने इस पर सफाई दी है कि ये कोई सलमान की बायोपिक नहीं है। लफड़ा बहुत बड़ा हो चला है दोस्तों। चलिए, इस धांसू और रोमांटिक कॉन्ट्रोवर्सी के बाद थोड़ा चिल करते हैं और सुनते हैं शो का आखिरी गाना, और दूसरा गाना। रिलीफ कीजिए अपने स्ट्रेस को इस ट्रैक के साथ।

वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपकी आरजे याजू और आप सुन रहे हैं फिल्मी गपशप सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम पर। अगर आप घर पर ब्लैंकेट के अंदर बैठकर बिंज वॉच करना पसंद करते हैं तो कल और परसों ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर फिल्मों और सीरीज की बाढ़ आने वाली है। सबसे पहले अमेजोन एमएक्स प्लेयर पर आज ही रिलीज हुई है जिम शर्प और नसरुद्दीन शाह का शो मेड इन इंडिया अ टाइटन स्टोरी। ये इंडिया के पहले वॉच स्टार्टअप की बेहतरीन कहानी है। और कल यानी 4 जून को नेटफ्लिक्स पर आ रही है माधुरी दीक्षित और तृप्ति धिमरी की थ्रिलर कॉमेडी फिल्म माँ बहन। इसमें एक डिसफंक्शनल फैमिली किचन में एक डेड बॉडी मिलती है। साथ ही साथ कल जियो हॉटस्टार पर रणवीर सिंह की मेकअप ब्लॉकबस्टर धुरंधर 2 द रिवेंज का अनरेटेड रो एंड अनदेखा कट भी स्ट्रीम होने जा रहा है। और हाँ, परसों यानी 5 जून को सोनी लिव पर हमारी सबकी फेवरेट मिश्रा फैमिली लौट रही है गुल्लक सीजन 5 के साथ, तो पॉपकॉर्न तैयार रखे। चलिए अब वक्त है हमारे आखिरी सॉन्ग का, मेरा मतलब है दूसरा सॉन्ग का, एक ऐसा गाना जो आपको बिल्कुल बेहतरीन वाइब्स देगा।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम और चल रहा है आपका सबसे बड़ा फिल्मी शो फिल्मी गपशप। दोस्तों जो चल रहा है वो तो बढ़िया है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या धमाका होने वाला है उसकी एक्सक्लूसिव खबर भी तो आपको चाहिए ना। इस जून के महीने में बड़े पैमाने पर थिएटरिकल रिलीजेस होने वाली है। सबसे पहले डायरेक्टर इम्तियाज अली की एक ग्रैंड पीरियड म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म मैं वापस आऊंगा रिलीज होने जा रही है। सबसे बड़ा ट्विस्ट पता है क्या है? इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ, शार्वरी वाक और वेदांग रैना लीड रोल्स में हैं, और इसका म्यूजिक दिया है खुद मेस्ट्रो एआर रहमान ने। इसके साथ ही अभिषेक पाठक ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि उनकी सस्पेंस फ्रेंचाइज दृश्यम 3 की शूटिंग पूरी तरह से रैप अप हो चुकी है। यानी अजय देवगन का विजय सलगांवकर कैरेक्टर बहुत जल्द दोबारा लौटने वाला है। चलिए इस एक्साइटिंग न्यूज के बाद सुनते हैं शो का अगला सॉन्ग। एंजॉय कीजिए इस एनर्जेटिक ट्रैक को।

दोस्तों, ट्रेलर लॉन्च तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले जब कॉकटेल 2 का ट्रेलर आया, उसने इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी है। ट्रेलर में शाहिद कपूर, कृति सनन और रश्मिका मंदाना तो है, लेकिन फैंस इस ट्रेलर से थोड़े डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि जो मजा और गुफीनेस ओरिजिनल फिल्म में सैफ अली खान की थी, वो इस सीक्वल के ट्रेलर में बिल्कुल मिसिंग है। लोग कह रहे हैं कि शाहिद और कृति की केमिस्ट्री थोड़ी ठंडी लग रही है। अब देखना यह होगा कि जब फिल्म थिएटर्स में आएगी तो क्या ये पब्लिक का दिल जीत पाएगी या नहीं। चलिए ट्रेलर के इस खट्टे मीठे रिव्यूज के बीच सुनते हैं अगला गीत, एक ऐसा ट्रैक जो आपको झूमने पर मजबूर कर देगा।

दोस्तों क्या एनर्जेटिक गाना था ये। दोस्तों हमारे क्रिकेट और बॉलीवुड स्टार्स कहाँ घूम रहे हैं ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होता है। आईपीएल की शानदार जीत के बाद हमारे किंग विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को कल ही वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के आश्रम में स्पॉट किया गया। इन दोनों की शांति और सुकून भरी पिक्चर्स इस वक्त इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है। दूसरी तरफ बॉबी देओल ने एक कैंडिड इंटरव्यू में बताया कि कैसे उनके करियर के बुरे दौर में उनकी वाइफ तानिया ने उन्हें अल्कोहल एडिक्शन से बचाया और उनकी जान बची। बॉबी देओल ने यह भी कहा कि उनके पापा यानी धर्मेंद्र का रोल स्क्रीन पर कोई प्ले नहीं कर सकता, न वो खुद और न ही सनी देओल।

0: दोस्तों आज हमने ढेर सारी बातें की, आयुष्मान और रणवीर सिंह की फिल्मों का हाल जाना, ओटीटी पर माधुरी और तृप्ति की वॉचलिस्ट तैयार की और सलमान खान से लेकर शाहिद रश्मिका तक की कॉन्ट्रोवर्सीज और गॉसिप्स पर चर्चा की। मुझे यकीन है कि आपको आज का ये मेगा एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त इसी जगह ढेर सारी नई फिल्मी किस्से और कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ ड्राइविंग कीजिए, ट्रैफिक रूल्स का ध्यान रखिए और हमेशा की तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर अरुण FM। दोस्तों ये थी फिल्मी गपशप, उम्मीद है आपको मिला होगा एंटरटेनमेंट का परफेक्ट दोस्त। अब कहीं जाएगा मत, अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से, जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा।
2: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो

विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। पहले चरण में लाभार्थियों के बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आपदा जोखिम न्यूनीकरण समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पूर्व में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों का आपसी संपर्क बढ़ेगा और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को बधाई दी है। तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। एलिस कैप्सी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, साथ ही उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी मिला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार ईटानगर आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से प्रसारित होने वाले महत्वपूर्ण समाचार खबरों के सिलसिले के बाद अब वक्त हो चला है एक ऐसे शो का जहां ना मेरी मर्जी चलती है ना स्टेशन डायरेक्टर साहब की, यहां सिर्फ और सिर्फ राज चलता है हमारे प्यारे लिसनर्स का। मैं हूं आपकी आरजी याजू और आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं आपसे आपके सबसे दिलदार आखिरी और सबसे खास शो रेडियो ऑन डिमांड में।
1: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।

दोस्तों ये शो मेरे दिल के सबसे करीब है क्योंकि इसमें आप और मैं हम दोनों मिलकर एक खूबसूरत म्यूजिकल दोस्ती का रिश्ता बनाते हैं। आपकी फरमाइश, आपके नाम और आपके पसंद के गाने, इससे बेहतर और क्या हो सकती है। आज भी हमारे मैसेज में और फोन लाइंस पर ढेर सारी फरमाइशें आई है, तो चलिए बिना देर किए सिलसिला शुरू करते हैं आज के पहले नगमे के साथ।

तो आज की जो सबसे पहली फरमाइश हमें मिली है वो आई है बॉर्डर के उस पार से, यानी हमारे पड़ोसी स्टेट असम के एक बहुत ही खूबसूरत शहर गोलाघाट से। और इसे भेजा है हमारे रोज के सुनने वाले, हमारे बहुत ही प्यारे डेली लिसनर रोमेश, रुनू और लकी ने। इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा गाना मांगा है जो बजे तो पैर अपने आप तिरकने लगते हैं। मोहम्मद रफी साहब की ऐसी जादुई आवाज और समी कपूर साहब का वो धांसू डांस कुछ याद आया। इन्होंने फरमाइश की है फिल्म प्रिंस से एवरग्रीन क्लासिक ट्रैक बदन पे सितारे लपेटे हुए। रोमेश, रुनू और लकी, आप तीनों को हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार। आपकी सुबह को बिल्कुल सुनहरी और म्यूजिकल बनाने के लिए ये गाना पेश है सिर्फ और सिर्फ आपकी फरमाइश पर। सुनिए और झूमिए।

दोस्तों रफी साहब की आवाज में जो मजा है ना, वो आज के जमाने के गानों में कहां। गोलाघाट से रोमेश, रूनू और लकी, उम्मीद है आप तीनों को अपनी पसंद का गाना सुनकर मजा आया होगा। चलिए अब लौटते हैं हमारे अपने कैपिटल रीजन की तरफ, यानी हमारे प्यारे नाहरलगुन में। वहां से हमारे एक और बहुत ही प्यारे डेली लिस्नर है, जिनका नाम है लोकीनाथ रोंगांग। लोकीनाथ जी रोज हमारे साथ जुड़ते हैं और उनकी पसंद भी हमेशा बड़ी कमाल की होती है। आज उन्होंने जो गाना मांगा है वो 90s और अर्ली 20s के हसीन दौर का है। फिल्म दिल मांगे मोर का गाना ऐसा दीवाना हुआ है पहली बार। लोकीनाथ जी, आपका ये दीवानापन और आपका ये रेडियो के प्रति प्यार हमें बहुत अच्छा लगता है। आपके इस दिन को और भी यादगार और रोमांटिक बनाने के लिए आपका फरमाइश गाना चलने जा रहा है, सो स्टे ट्यून्ड।

असम के हेलम से हमारे साथ जुड़ती है ज्योति सुरीन। ज्योति, सबसे पहले तो आपको हमारे पूरी टीम की तरफ से बिग थैंक यू हमारा शो इतने दिल से सुनने के लिए। ज्योति, आपने हमसे फरमाइश की थी सैयारा फिल्म का टाइटल ट्रैक, लेकिन आज मैं इस शो में थोड़ा सा ट्विस्ट ला रही हूँ सिर्फ आपके लिए। आपने जो आपने कोई वर्जन का नाम नहीं लिखा, लेकिन मैं आज आपको इसका फीमेल वर्जन डेडिकेट करने जा रही हूँ, क्योंकि ज्योति आप भी एक फीमेल है और मैं भी, और हम लड़कियां ना आपस में एक अलग ही कनेक्शन शेयर करती हैं। और जब ये गाना हमारे सबकी प्यारी स्वीट और एंजेलिक आवाज वाली श्रेया घोषाल की वॉइस में बजेंगी, तो मुझे पूरा यकीन है कि ये सीधा आपके दिल को छू जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ओरिजिनल से ज्यादा आपको श्रेया घोषाल की ये रिप्राइज वर्जन, बेहद खूबसूरत और इमोशनल वर्जन पसंद आएगा। तो मेरी प्यारी ज्योति, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हेलम असम के नाम ये रहा श्रेया घोषाल की आवाज में सैयारा फीमेल वर्जन में।

दोस्तों, श्रेया की आवाज में जो सुकून है वो सच में इस दुनिया से अलग है। ज्योति, उम्मीद है आपको हमारा ये छोटा सा सरप्राइज और ये फीमेल वर्जन बेहद पसंद आया होगा। मुझे जरूर बताएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। दोस्तों, फरमाइशों का ये सिलसिला अभी रुका नहीं है। अभी तो हमारे पास और भी ढेर सारे नए और पुराने गाने बाकी हैं जो आप सभी ने रिक्वेस्ट किए हैं। रेडियो ऑन डिमांड पर गाने आते रहेंगे और आपके नाम गूंजते रहेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, बस अपनी पसंद की प्लेलिस्ट तैयार रखें और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर अरुण FM। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ।

चलिए सफर को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं असम के एक और खूबसूर्त पहाड़ी इलाके की तरफ यानी कार्बी आंगलोंग। वहां से हमारे डेली लिसनर जोगिंद्र, सोनाली और दोरम किरी ने एक बहुत ही प्यारी और इमोशनल फरमाइश भेजी है। इन्होंने याद किया है जमीतीज के उस सुनहरे दौर और देवानंद साहब और हेमा मालिनी की आइकॉनिक फिल्म जोनी मेरा नाम का एक बेहद खूबसूरत गाना रिक्वेस्ट किया है। जोगेंद्र जी, सोनाली और दोरम किरी, आप तीनों की पसंद सच में लाजवाब है। हेमा मालिनी जी पर पिक्चराइज लता मंगेशकर जी की आवाज में पेश है आपकी फरमाइश पर जोनी मेरा नाम से ये इमोशनल और क्लासिक ट्रैक ओ बाबुल प्यारे। सुनिए और अपनी यादों को ताजा कीजिए।

दोस्तों, क्या हसीन गाना था ओ बाबुल प्यारे। सुनकर तो पुराने जमाने की सिनेमा की याद बिल्कुल ताजा हो गई। जोगेंद्र जी, सोनाली और दौरम खीरी, उम्मीद है कार्बी आंगलोंग ने आप तीनों को अपनी फरमाइश सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगली फरमाइश जो मेरे साथ है वो बड़ी दिलचस्प है। किसी बहुत ही प्यारे लिसनर ने हमें एक खत भेजा है, अपने पसंद का गाना भी लिखा लेकिन शायद वो जल्दी जल्दी में अपना नाम लिखना भूल गए। चलिए कोई बात नहीं, नाम में क्या रखा है, आपका प्यार हमारे पास पहुंच गया है, वही सबसे बड़ी बात है। हमारे इस मिस्ट्री लिसनर ने नवजोत आहूजा का एक बेहद प्यारा और ट्रेंडिंग डिवोशनल

रिक्वेस्ट किया है तेरे लिए मंदिर जाओ। तो हमारे जिस भी दोस्त ने ये गाना रिक्वेस्ट किया है, आप जहां कहीं भी है इस वक्त अरुण एफएम सुन रहे हैं, ये गाना सीधा आपके लिए चलने जा रही है। और हाँ, अगली बार अपना नाम लिखना मत भूलिएगा। तो सुनिए ये बेहतरीन ट्रैक।

दोस्तों बहुत ही प्यारा ट्रैक था ये। उम्मीद है हमारे उस एनोनिमस लिसनर को अपना ये गाना सुनकर अपनी सुबह और भी स्पेशल लग रही होगी। दोस्तों फरमाइश हो कि ये मैसेजेस आते ही रहेगी मेरे पास। अभी भी और भी मैसेजेस आए हैं, आप बस जुड़े रहिए हमारे साथ और एंजॉय करते रहिए अपना फेवरेट शो रेडियो ऑन डिमांड, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर।

वेलकम बैक दोस्तों, तेरे लिए मंदिर जाओ सुनकर सुबह का मूड और भी बेहतरीन हो गया है। और हमारे जो मिस्ट्री लिसनर्स अपना नाम भूल गए थे, उनके चेहरे पर भी जरूर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई होगी। चलिए फरमाइशों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, एक बार फिर चलते हैं असम की तरफ। इस बार हम रुक कर रहे हैं लखीमपुर का। लखीमपुर से हमारी एक बहुत ही स्वीट लिसनर नेहा ने हमें मैसेज भेजा है। नेहा ने आज के इस हसीन मौसम के लिए 2000 के दौर का एक बेहद खूबसूरत और मधुर गाना रिक्वेस्ट किया है। इन्होंने फरमाइश की है अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की फिल्म कुछ ना कहो से शान और सुजाता भट्टाचार्य का गाया हुआ ट्रैक कुछ ना कहो।

दोस्तों आप सभी के इस बेइंतहा प्यार के लिए आकाशवाणी ईटानगर और मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। जिन दोस्तों की मैसेज फरमाइश है कि गाने आज टाइम के कमी की वजह से मैं नहीं बजा पाई, उनसे मैं माफी चाहती हूं, लेकिन आप निराश मत हो जाइए दोस्तों। आपका ये दोस्त वादा करती है कि अगली बार मैं जरूर आपकी रिक्वेस्ट को बजाऊंगी। अब चलने का वक्त हो गया है, मौसम बदला हुआ है, इसलिए अपना और अपने फैमिली का पूरा ख्याल रखिए। गर्म चाय पीजिए, सुरक्षित रहिए और गाड़ी चलाते वक्त ट्रैफिक रूल्स का ध्यान जरूर रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और झूमते रहिए सिर्फ और सिर्फ आपके अपने स्टेशन आकाशवाणी ईटानगर अरुण FM पर।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। इसी के साथ अब हम आज के प्रातःकालीन प्रसारण सत्र के समापन पर आ पहुंचे हैं। उम्मीद है रोजाना की तरह आज भी आपको हमारा ये संगीतमय सफर बेहद पसंद आया होगा। आज के इस पहले प्रसारण में मेरे साथ थे स्टूडियो तथा एचपीटे में मौजूद मेरे सहयोगी प्रसारण निष्पादक एल ताली और तकनीकी अभियंता एम जिर्दो। दोस्तों कहीं मत जाएगा क्योंकि मनोरंजन का यह सिलसिला हमारे मध्य प्रसारण के साथ यूं ही जारी रहेगा अब से लेकर शाम 4:20 तक आरजे सुम्पी के साथ। तो बने रहिए अरुण एफएम के साथ। तो अब अपने आरजे याजू को दीजिए इजाजत। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है और सुनते रहिए अरुण एफएम। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा।
2: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। पहले चरण में लाभार्थियों के बैंक खाते में आज से ही 3,000 रूपये भेजना शुरू करेंगे। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों का आपसी संपर्क बढ़ेगा और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका के निकेशन द्वीप द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के पांचवें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव के बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार के समिति सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

प्यारे श्रोताओं, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आप इस वक्त अपने रेडियो साथी यानी कि बामिन सुम्पी के साथ आप बने हुए हैं हमारे आज के दूसरे ट्रांसमिशन में, और इस ट्रांसमिशन में आप मेरे साथ बने रहेंगे अब से लेकर शाम के 4:20 तक।

और श्रोताओ, हमारे इस सभा के सभी कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारा साथ दे रहे हैं एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों के साथ प्रसारण निष्पादक गैर एते और तकनीकी अभियंता ए के सक्सेना। तो चलिए श्रोता, देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारे इस सभा को हमारे पहले कार्यक्रम के साथ, यानी कि फिल्मी लहर के साथ। और इस कार्यक्रम में हम आपका मनोरंजन करवाएंगे कुछ बेहतरीन हिंदी फिल्मी गीतों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष

जबलपुर में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंगकांग और आरोई ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा

श्रोताओं, अब वक्त हो चला है हमारे कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s का। श्रोता, आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे म्यूजिकल माइस्ट्रो एआर रहमान के कुछ यादगार गीतों को, जो 90s के दशक में बड़ी फेमस हुए थे ये गीत। तो चलिए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को पहले गीत के साथ। वैसे तो फिल्म बॉम्बे में जितने भी गाने हैं सभी बहुत पॉपुलर हुए थे और ये उनमें से एक है। ये आइकॉनिक एवरग्रीन गीत है, तो आइए सुनते हैं इसे।

आप हमारे साथ बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा अगला कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट।

अवार्ड्स जीते हैं। फिल्म के युवा नायक गुगुन किपगेन को बेस्ट चाइल्ड एक्टर का अवार्ड दिया गया है, जबकि फिल्म निर्माता लक्ष्मी प्रिया देवी को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। और फिल्म की सफलता में एक और उपलब्धि ये भी है कि इस फेस्टिवल के कमिटी ने बॉम को बेस्ट डेब्यू फिल्म का खिताब भी दिया है। यहां श्रोता, इससे पहले इस फिल्म ने बाफ्टा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया था। इंडिया की पहली फिल्म जिसे बाफ्टा अवार्ड मिला था। इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स में लगातार मिल रही सफलता के बाद फिल्म बॉम को ओटीटी रिलीज का फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी मेकर्स की तरफ से इसकी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग को लेकर कुछ भी आधिकारिक तौर पर अपडेट्स नहीं आए हैं। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में ये मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ऑनलाइन रिलीज हो सकती है। ये फिल्म एक बच्चे की है जो अपने खोए पिता को ढूंढने निकलते हैं, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है मणिपुरी फिल्म मेकर लक्ष्मी प्रिया देवी ने, और फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी ने इसे प्रोड्यूस किया है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट में आज के लिए बस इतनी ही अपडेट। आइए अब आपका मनोरंजन करवाते हैं कुछ हिंदी फिल्मी गीतों के साथ।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट। अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे वांचू श्रोताओं का कार्यक्रम। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: इजा आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ अनि जून लेट मानी रम तारीख बुधवार इरुमा के वांचो चाय का होवांग वांगना होवांगे का हो पाई फाले मंचुई जामे कमे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अनि न्यू दिल्ली तो इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी सिया इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पनले अमय अंक बामा अटू अजा के नेशनल टू सो का डबले हाजामा प्रेसिडेंट ए development akeng ke ham hiya akeng ke ting khong bu kap le hayang ke mot la ka ke bo ma government scheme bu ba ma yo ma sing ke tribal khanak nu chu atha chu dai pu le ban le ipong ke janjatiya garima utsap 2026 pai ke ang atu aja ke haya tu sok ma state zarok bo ma union territories ali to ke le hak le Union Minister of State for External and Textiles, Pavitra Margarita, District Kanke Mali Mali Infrastructure here, Developmental Project Butohume Ang Hayangke Hokutba Nimakang.

0: Fed stampai le consultative cum stakeholder meeting angot le hayama mental health mut mi thambo ma state anke advocates bu le mi hwak sa ga taku apho le habo ma itare municipal corporation e ani nirjuli to ward number 19 ma eviction drive mokle hale kha to khanak nu e khanak nu mop cho lam sai aba abang le thum ke boma pangcha yan wang bu chu apho le tham sat le le chai ka ko ngo ka khoma mokle hale Arunachal Pradesh municipal corporation act 2019 kha angke section 247 wan lam te ma mokle hajaba ma joint commissioner khoda lasa e hale khanak nu rong me chu mai honu chu chau le tham ke boma urban administration motto chu mai le moksa ke rong ma mokha su jau le van le ani ka ka ho iwai ija akashvani
1: श्रोताओं आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का कार्यक्रम जिसका प्रसारण किया जा रहा था मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर। अगर आप इनके आगे के कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर ट्यून इन करके उन्हें सुन पाएंगे। और श्रोता आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं कुछ बेहतरीन हिंदी फिल्मी गाने।

हमें क्या मालूम था कि इश्क होता क्या है, बस एक तुम मिले और जिंदगी मोहब्बत हो गई। इश्क की गहराइयों में खूबसूरत क्या है, मैं हूं तुम हो और कुछ की जरूरत क्या है।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम और आपसे थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे ईद उमिश्वी श्रोताओं का कार्यक्रम। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: अभी आप सुन रहे थे वांछो श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। श्रोता लीजा प्रस्तुत है ईदू मिशिमी श्रोताओं का कार्यक्रम।

ऐचा आकाशवाणी ईटानगर थालापुची एसो लेवलिनी एतनिची एक मिसमी आहोला किजी दरगालंबो डेवलपमेंट जो में है अतिकोशों का तंदोलीबा फिगानाचे ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू में ओना मैं दिल्ली माने ट्रैवल इमुगेबा एसआईटीडीए दोने आईटीडीपी अमुआ बायोची पॉइंट नेशनल कॉन्क्रेट आखगा मचे जाएबा महोला गने ट्रैवल इमु खोमें अच्छा हो गया आहु आरोग्य बने आया इस किमची पो असगा जिमचा है इनुदा लगाता आओगा ऐसा प्रोग्राम भी जनजाति गरिमा उत्सव एजर खाया अन्य तारों को कमाने अखगा महो अन्य तारों स्टेट दोने काफी यूनाइटेड ट्री आती मची ट्राइबल

श्रोताओं, आप सुन रहे थे ईद उमेश में श्रोताओं का कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम जारी रहेगा आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर। और श्रोताओं, आप हमारे साथ बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। चलिए श्रोता, आगे बढ़ते हैं और आपका मनोरंजन करवाते हैं कुछ और हिंदी फिल्मी गीतों के साथ। श्रोताओं, हर आशिक की एक अजब कहानी है, चुप रहना भी प्यार की निशानी है, कोई जख्म नहीं फिर भी दर्द का एहसास है, लगता है दिल का एक टुकड़ा आज भी उसके पास है।

अर्ज किया है, तेरी आंखों के सामने ये शहर कौन देखेगा, तू दरिया सी है ये लहर कौन देखेगा। सारा शहर देख लिया, सारा शहर काफी ना था, जब तेरी आंखों को देखा तो फिर और बाकी ना था।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स, और अब से थोड़ी देर में यानी 4:20 पर आप सुन पाएंगे तानसा श्रोताओं का कार्यक्रम। और श्रोताओं, उसी के साथ ही समाप्त हो जाता है हमारा आज का सेकंड ट्रांसमिशन। पर श्रोताओं, आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हमारे तीसरे ट्रांसमिशन के लिए स्टूडियो पर आप पहुंची है आरजे सुलोकना, जो आपका साथ देंगे हमारे तीसरे प्रसारण के कार्यक्रमों में। तो श्रोता, आप मुझे यानी कि रेडियो साथी बामिन सुम्पी को आप दीजिए इजाजत, और आप बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे दांक्षा श्रोताओं का समाचार। इस कार्यक्रम को आगे सुनने के लिए आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज, या फिर आप न्यूज ऑन एयर एप्लीकेशन के माध्यम से भी इन कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM है जिसे आप सुन रहे हैं FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार डियर लिसनर्स, दिन अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है और शाम अपने साथ लेकर आई है सुकून, ताजगी और कुछ खूबसूरत एहसास। ऐसे ही सुखद माहौल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। इससे पहले श्रोता दोस्तों, दूसरी प्रसारण सभा में आप सुन रहे थे आरजे सुम्पी को। मैं हूं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुलोकना और अब से लेकर रात्रि के 9:30 तक इस तीसरी प्रसारण सभा में आपके संग बनी रहूंगी। संगीत, मुस्कान और कुछ दिल छू लेने वाली बातों के साथ बताना चाहेंगे इस सभा के विभिन्न कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारा साथ दे रहे हैं तमाम एफएम ट्रांसमीटर के सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक तीतांगजांग तथा तकनीकी अभियंता तानातुम। तो चलिए इस खूबसूरत शाम को और भी खूबसूरत बनाते हैं, क्योंकि अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे ज्ञान और मनोरंजन का सेगमेंट गुड इवनिंग ईटानगर।

एक बार फिर से कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में आप सभी लिसनर्स का तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो चलिए बढ़ चलते हैं कार्यक्रम में सबसे पहले एक प्यारे से गीत की ओर।

ഇതാണിത്. बिल्कुल दोस्तों, यह है ज्ञान और मनोरंजन का सेगमेंट गुड इवनिंग ईटानगर, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर. कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है. हम आपको सुनवा रहे थे दिल ना जानिया फिल्म गुड न्यूज से. यह है सेगमेंट ज्ञान और मनोरंजन का, और आज इस अंक में मैं फिर लेकर आई हूं एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी. उम्मीद करते हैं आपको पसंद आये.

दोस्तों कहानी का शीर्षक है दुख और नमक। एक बार की बात है, एक युवक गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, महात्मा जी, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, कृपया इस परेशानी से निकलने का उपाय बताइए। बुद्ध बोले, पानी के गिलास में एक मुट्ठी नमक डालो और उसे पियो। युवक ने वो पानी पीते ही कहा, बहुत ही खराब, एकदम खारा है। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, एक बार फिर अपने हाथ में एक मुट्ठी नमक ले लो और मेरे पीछे आओ। अब वो युवक हाथ में मुट्ठी में नमक लिए बुद्ध के पीछे पीछे जा रहा था। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और थोड़ी दूर जाकर स्वच्छ पानी से बनी एक झील के सामने रुक गए। फिर बुद्ध ने कहा, चलो अब इस नमक को इस झील में डाल दो। युवक ने ऐसा ही किया, अब इस झील का पानी पियो। युवक पानी पीने लगा। बुद्ध ने पूछा, बताओ अब इसका स्वाद कैसा है, क्या अभी भी तुम्हें ये खारा लग रहा है? युवक ने कहा, नहीं, ये तो मीठा है, बहुत अच्छा है। फिर आगे बुद्ध युवक

के बगल में बैठ गए और उन्हें बोले, जीवन के दुख बिल्कुल नमक की तरह है, ना इससे कम ना ज्यादा। जीवन में दुख की मात्रा वही रहती है, बिल्कुल वही, लेकिन हम कितने दुख का स्वाद लेते हैं ये इस पर निर्भर करता है कि हम उसे किस पात्र में डाल रहे हैं। इसलिए जब तुम दुखी हो तो सिर्फ इतना कर सकते हो कि खुद के मन को बरा कर लो। तो दोस्तों, हम हमेशा सुख की कामना तो नहीं कर सकते, सुख और दुख जीवन में आते जाते रहेंगे, लेकिन मन को बड़ा करना शायद एक हल हो सकता है। सुखी वही है जो सदा संतुष्ट है।

इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी, इसी गीत के साथ ही श्रोता दोस्तों हम आप सभी को छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ ही पलों में वक्त हो जाएगा हिंदी समाचार का। हिंदी समाचार के तुरंत बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार, और फिर आप सुन पाएंगे नौकते श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से। हम फिर आपसे मिलेंगे शाम के 5:05 पर, यही आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम पर, कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव के संग। तब तक के लिए सुनते रहें आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम।

0: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। दिल्ली के मानवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा। केंद्रीय विदेश एवं वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा शुक्रवार से अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश के रोइंग स्थित रिवॉच परिसर में APPSC प्रारंभिक परीक्षा सुविधा कार्यक्रम का तीसरा बैच शुरू हुआ। कार्यक्रम का आयोजन रिवॉच रोइंग तथा पुणे स्थित जनन प्रबोधनी प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रणाली को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत ICMR AITS द्वारा पापुमपारे जिले के दोईमुख स्थित राजीव गांधी विश्वविद्यालय में परामर्श सह हितधारक बैठक आयोजित। भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में HS प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स में मैच खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस आयुक्त अनंत मित्तल ने बताया है कि दमकल की 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई। इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
2: इनके लापरवाही के कारण ये हुआ है। पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। केंद्रीय विदेश एवं वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा शुक्रवार से अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। प्रस्तावित दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री जिले में चल रही विभिन्न आधारभूत संरचना एवं विकास परियोजनाओं का व्यापक निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा वे जिला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे, जिसमें विकास गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी तथा जिले के कल्याणकारी और प्रगति से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। दौरे के तैयारियों के तहत लोअर सियांग जिला प्रशासन ने एक समन्वय बैठक आयोजित कर केंद्रीय मंत्री के जिले के सुचारू एवं सफल दौरे के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं का अंतिम रूप दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के रोइंग स्थित रिवॉच परिसर में APPSC प्रारंभिक परीक्षा सुविधा कार्यक्रम का तीसरा बैच शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम का संयुक्त रूप से आयोजन रिवॉच रोइंग तथा पुणे स्थित जनन प्रबोधनी प्रतियोगिता परीक्षा केंद्र द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश के सिविल सेवा अभ्यर्थियों को APPSC परीक्षा की तैयारियों में सहायता प्रदान करना है। उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन हाइब्रिड मोड पर किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने प्रत्यक्ष और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से भाग लिया। अरुणाचल प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रणाली को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत ICMR AITS परियोजना दल ने पापुमपारे जिले के राजीव गांधी विश्वविद्यालय में राज्य के मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों एवं समर्थकों की एक परामर्श सहायता धारक बैठक आयोजित की, जिसमें राज्यभर के विभिन्न संगठनों और सेवा क्षेत्रों का प्रस्तावित करने वाले लगभग 25 मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों और समर्थकों ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और सहयोग तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने पर विचार विमर्श करना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजाति विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्र सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा है कि देशभर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा है कि देश के प्रत्येक गांव और व्यक्ति तक विकास पहुंचना जरूरी है।
3: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तले इलाकों में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
0: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में योगदान देने का आह्वान किया है। राज्य के कोलासिब जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा है कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर दिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल में 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमेरिकी सेना ने हमले के बाद हुई इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय और संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई है। एक रिपोर्ट।
4: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणय आयरलैंड के नेहत गुयेन और आयुष शेट्टी चीन के वैंग होंग यांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले दौर में ही हार कर बाहर हो चुके हैं। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओंगा मुरुंगफांग को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
5: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
0: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कई बदलाव नहीं करेगा। नीति निर्णय शुक्रवार को घोषित किए जाएंगे। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। यह प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: This is Akashwani, the news read by Hagayani. 21 people lost their lives and 40 others were rescued after a fire broke out at a hotel in Malviya Nagar in Delhi this morning. DCP of South Delhi Anand Mittal said the fire has been successfully extinguished with the assistance of 8 fire tenders. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the loss of lives in the fire incident. In a social media post, the Prime Minister said that authorities are providing all possible assistance to those affected. He also wished a speedy recovery to the injured. Mr. Modi also announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund to be given to the next of kin of each deceased. The injured would be given 50,000 rupees. Vice President C.P. Radhakrishnan, Home Minister Amit Shah and Delhi Chief Minister Rekha Gupta have also extended condolence over the loss of lives. The Supreme Court has constituted a high-powered expert committee to conduct an independent review of the Centre's report on the definition and delineation of the Aravalli Hill Range. The committee will be headed by Kanchan Devi, Director General of the Indian Council of Forestry, Research and Education. The panel has been asked to submit its report by August 31 this year. The Apex Court said an impartial and scientific assessment is needed to address key issues related to the protection of the Aravalli ecosystem. The court had earlier stated the implementation of an Environment Ministry report submitted in October last year and called for a fresh review by independent experts. India has surpassed America in annual solar capacity additions to become the world's second largest solar growth market in 2025. India has crossed a remarkable 155 gigawatt of installed solar capacity, helping achieve country's 50% non-fossil fuel capacity target and fulfill its nationally determined contributions ahead of schedule. The CBSE has said that nearly 40,000 students have successfully submitted their re-evaluation applications and completed the application process without facing any issues. CBSE had yesterday opened the online portal for verification of issues observed in scanned copies of answer books and re-evaluation of answers for class 12 students. Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, will be on a 5-day visit to India from today. During the visit, she will hold bilateral discussions with Prime Minister Narendra Modi to review the full spectrum of India-Venezuela relations. The two countries will explore avenues for cooperation in key sectors including trade, investment, energy, renewable energy, healthcare and pharmaceuticals. President Draupadi Murmu today inaugurated the National Conclave on Strengthening of Integrated Tribal Development Agencies and Integrated Tribal Development Projects in New Delhi. Addressing the occasion, the President said that tribal society living across the country is culturally very rich and efforts must be made to bring the tribal community forward. She said development must reach the last home and the last village. Ms. Murmu expressed concern that there are still some sections of tribals who are unaware of the various schemes of the government. The President called upon all the agencies and stakeholders to ensure the development of every aspect of tribal welfare, including dignified job for youth and school for every tribal child. Union Minister for Youth Affairs and Sports, Mansukh Mandavia, has urged India's youth to embrace cycling and lead the movement for a fitter, healthier and greener nation. Sharing a video message on the World Bicycle Day, the minister noted that adopting a cycle as a regular habit can encourage a balanced and disciplined lifestyle while also supporting environmental sustainability and cleaner mobility. In Mizoram, Union Minister of State for Information and Broadcasting and Parliamentary Affairs, Dr. L. Murugan, has called upon the people to actively participate in the nation-building process and contribute towards the vision of a developed India by 2047 under the Viksit Bharat initiative. During an interaction with government officials at Kolasib district, the minister emphasized that the central government places high priority on the development of the Northeast region. The Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee began its three-day policy meeting in Mumbai today, with experts widely expecting the central bank to maintain the status quo on interest rates amid volatile global conditions driven by the ongoing tensions in West Asia. The policy decision will be announced on Friday. That's all in this news bulletin. Namaskar.

0: अभी आप सुन रहे थे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। श्रोता लीजा प्रस्तुत है नोक्ते श्रोताओं का कार्यक्रम।
1: अब आकाशवाणी ईटानगर दिबिगरवा नोक्ते प्रोग्राम अथुरंग जथा वनबंगा सानपो दंग रिन रिन नंग नोक्ते खुबुचु तटक थजा बुध भाजा तीन तारीख जुनजंग खुबुचु को देपा किम किम तेसिया। President Draupadi Murmu ma thaja New Delhi nang National Conclave and Strengthening of Integrated Tribal Development Agencies and Integrated Tribal Development Project inaugurate honka aro occasion ko President Mangai ka development faida pa aphang village nang humhum nang ponchimin te mangai ka ahethumin wanthawante tribal communities he government welfare scheme nga nang jankari thienma अरे इवन पा जनजातिया गरिमा उत्सव 2026 पार्ट को मोनेका अरे कंक्लेव को 26 स्टेट निया वानबली यूनियन टेरिटोरी वा रिप्रेजेंटेटिव है पार्टिसिपेट कब का यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर एंड टेक्सटाइल पवित्र मार्गरिता हुकुट पा जापमा लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट नंग निरंग ऑफिशियल विजिट वनमेन अरे विजिट पोर्ट को यूनियन मिनिस्टर डिस्ट्रिक्ट नंगजोली का इंफ्रास्ट्रक्चर निया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हे इंस्पेक्शन हुआनमिन ते डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल निया पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हे दमनंग कोऑर्डिनेशन मीटिंग कमेंचियर हुआनमिन अको डिस्ट्रिक्ट वा डेवलपमेंट काम निया वेलफेयर रिलेटेड मैटर को कमेंट जाप मिनमिन अरे विजिट तैयारी रंग लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ममजा वांथे कोऑर्डिनेशन मीटिंग थियनवा अको यूनियन मिनिस्टर गामा स्मूथ ला फ्रूटफुल टूर्बो नारंग अपंग अरेंजमेंट को नंग डिस्कस ला फाइनलाइज वन का गवर्नमेंट मा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार PMRBP 2026 रंग नॉमिनेशन रंग इनवाइट वन का नॉमिनेशन सबमिट वन लास्ट डेट पा 31 जुलाई आर प्रेस्टिजियस अवार्ड पा प्रेसिडेंट गामा लता हे नंग को मिनहन मा ब्रेवरी सोशल सर्विस एनवायरमेंट स्पोर्ट अर्थ एंड कल्चर दिको साइंस एंड टेक्नोलॉजी रंग रंग को Exceptional contribution hon kahit na nga. Ministry of Women and Child Development ma chuto kui hi nomination pa National Award Portal through ma submit hon min. awards.gov.in through mia. Ek Bharat Shrestha Bharat Initiative kon nang Governor Lieutenant General K.T. Pranaik diko State First Lady Anagha Pranaik ma Itanagar Lok Bhavan nang Telangana Sikkim diko Goa he State Foundation te celebrations ko part kap ka. Governor ma Telangana Sikkim diko Goa mi nyan he nang ara occasion tha warm wish mat ka. Governor ma Ek Bharat Shrestha Bharat वांथे विजनरी इनिशिएटिव नै का दिगु नै का अरे एम पा एकता तंगुका रोमा असंथम तोंगपा मजबूत पोना रंग होन का सेंटर मा जल जीवन मिशन 2.0 खनंग अरुणाचल प्रदेश तमनांग वांथे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन होन का अरे एम पा स्टेट नंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई पा जोमिन मजबूत पोना रंग होन का चीफ मिनिस्टर पेमा खंडो मा PHED मिनिस्टर मामा नातुंग नंग मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति निया अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट तुंग नंग MOU साइन प्रोग्राम दंगता को ऑनलाइन पार्ट कपवा चीफ मिनिस्टर पेमा खंडो मंगे का जल जीवन मिशन 2.0 ड्रिंकिंग वाटर सर्विस पा मजबूत ला सस्टेनेबल बोनारा वांथे इम्पोर्टेंट स्टेप ते मंगे का अरे इनिशिएटिव पा जो कमी प्रॉब्लम पा संसिर रंग सर्विस डिलीवरी सिस्टम पा बेहतर बोना रंग दिको हुम हुम नंग टेप चोपा पोंची रंग मोड चो रंग होन का अरे MOU साइन पा यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति CR पटेल निया मिनिस्टर फॉर स्टेट V सोमाना प्रेजेंट पोर्ट को होनवा दिबंग वैली डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज में मजा सर्किट हाउस आनीनी नंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स इम्प्लीमेंटेशन को नंग डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज होन का वर्कशॉप को रूरल एरिया नंग वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पर जोमिन मजबूत बोना खो को डिस्कस होनवा APPSC प्रीलिम्स फेलिसिटेशन प्रोग्राम थर्ड बेच बमजा रिवाच कैंपस रोइंग न होनवा अर प्रोग्राम पा रिवाच रोइंग निया जनना प्रबोधिनी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन सेंटर पुणे गामा ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज होनवा अर एनोग्रेट प्रोग्राम पा हाइब्रिड मोड गामा कंडक्ट होनवा अर को पार्टिसिपेंट है ऑफलाइन निया ऑनलाइन में पार्ट कपवा अरुणाचल प्रदेश नंग मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम पर मजबूत बोना रंग वांधे इम्पोर्टेंट स्टेप उठाएगा ICMRAITS project team niya Rajiv Gandhi University ma Rajiv Gandhi University nang mental health professional niya advocates ko nang consultative cum stakeholder meeting organize wanwa. Are meeting aim pa state nang mental health related modot le support system pa better bonarang huanka. Meeting ko almost 25 mental health professional tiko advocate semin part kawa. Thejanang nukte kubot pa akujurat hun mangta. Aro Akashwani Itanakar Dibrugarhwa Sese program khabang ko chahi niya rapcha kamhuawa ronyan se tat mangan.
2: श्रोता दोस्तों अभी आप सुन रहे थे नोक्ते श्रोताओं का समाचार. इस कार्यक्रम को आगे पूरा सुनने के लिए आप अभी ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज, या फिर आप न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी इन कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं. यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है जिसे आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर. और दोस्तों अब से कुछ ही पलों में प्रस्तुत है कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव.

0: संगीत,
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी।

समा है सुहाना सुहाना, हवाओं में मस्ती से छा जाना, आपके शाम के सफर को कर देने और भी खुशनुमा, लेकर आते हैं हर्ष इवनिंग ड्राइव।

0: तो दोस्तों सुन रहे थे आप ईयर 2009 की फिल्म राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज से के की जादुई आवाज में ओ जाना। इसी गीत के साथ ही हमने शुरू कर लिया है कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव। साथ ही डियर लिसनर्स बताना चाहेंगे कि आज कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव में पेश है ऐसे ही मस्ती भरे धुन 2000s के एरा से, वो दौर जब मेलोडी और बीट्स का ऐसा कॉम्बिनेशन बनता था और बन भी रहा है कि पैर अपने आप थिरकने लगे। तो चलिए दिन भर के सारे स्ट्रेस को हवा में उड़ाते हैं और बढ़ चलते हैं अब अगले गीत की ओर।
1: Spirits of two. I spirit.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

सुन रहे थे आप तौबा तौबा इश्क में कर लिया, फिल्म काल से, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2005 में। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम पर और सुन रहे हैं कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव। अब आगे बढ़ते हैं और बढ़ चलते हैं ऐसे गीत की ओर जो है थोड़ा रोमांटिक और थोड़ा सा चुलबुला। तो चलिए जानते हैं वो कौन सा गाना है जो अब हम आपके लिए पेश करने वाले हैं।

कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव में आप बने हुए हैं और इस अंक में आज हम पेश कर रहे हैं 2000s के नगमे, मस्ती भरे धुन। चलिए बढ़ चलते हैं ऐसे ही अगले धुन की ओर।

तो दोस्तों मौजा ही मौजा के साथ ही कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का आज का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन आप जाइएगा कहीं नहीं क्योंकि अब से कुछ ही पलों में लेकर आ रहे हैं सॉफ्ट सूदिंग हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम की महफिल, यही आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

स्वागत है आपका शाम के इस बेहद खूबसूरत मोड़ पर। कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव की तेज रफ्तार के बाद अब हम कदम रख रहे हैं अपने सबसे पसंदीदा और रूहानी सेगमेंट शाम की महफिल में। वैसे तो कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और अभी अभी आप सुन रहे थे शाइनिंग इन द सेटिंग सन लाइक अ पर्ल अपॉन द ओशन। इस गीत के न जाने कितने वर्जन्स हम सब ने गुनगुनाए हैं और मजे की बात तो ये है कि आज भी कभी कभी इसके सही लिरिक्स दिमाग में आते आते रह जाते हैं। खैर, अब बढ़ते हैं आगे शाम की महफिल के सफर में, जहां आपके लिए हम पेश करेंगे दिल को छू लेने वाले कुछ और रूहानी नगमे। बस बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM पर।

वैसे तो तेरे ना में भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी, यू ही। बिल्कुल श्रोता दोस्तों, अगला नगमा है फिल्म तनु वेड्स मनु से। शाम की महफिल के इस रूहानी सफर को इसी खूबसूरत एहसास के साथ आगे बढ़ाते हैं। ईयर 2011 की फिल्म तनु वेड्स मनु से राजशेखर के लिखे इस बेहद खूबसूरत शब्द और मोहित चौहान की वो मखमली जादुई आवाज जो सीधे रूह में उतर जाती है।

मोहित चौहान की जादुई आवाज और ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म तनु वेद्स मनु से। इस एहसास के बाद अब आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम है शाम की महफिल और आखिर दिल ही तो है। तो चलिए बढ़ चलते हैं दिल ही तो है गीत की ओर। फिल्म का नाम है द स्काई इज पिंक।

AR रहमान की धुन और अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में आप सुन रहे थे ए नाज़नीन सुनो ना, फिर दिल ही दिल में से। तो दोस्तों, कार्यक्रम शाम की महफिल का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन कहते हैं ना कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है, तो आप कहीं मत जाइएगा। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, बिल्कुल नॉनस्टॉप हिंदी फिल्मी तराने हम आपके लिए पेश करेंगे कुछ ब्रेक्स के संग, अब से कुछ ही पलों में।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 में।

और दोस्तों, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम पर, सुन रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों का कारवां। जैसे कि शुरुआत में हमने कहा था कि इस अंक में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं बैक टू बैक हिंदी फिल्मी तराने, लेकिन कुछ ब्रेक्स के साथ। जिंदगी में ब्रेक लेना तो बनता ही है। खैर, चलिए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर।

नमस्कार ईटानगर के वासियों, मौजूदा मानसून को देखते हुए ईटानगर राजधानी क्षेत्र में भूस्खलन, बाढ़, सड़क अवरोध की आशंका हो रही है। यदि अग्रिम सावधानी नहीं बरती गई तो मानव जीवन और संपत्ति की हानि होने की पूरी संभावना है। अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम चेयरमैन ऑफ DDMA कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्री तोको बाबू आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर के रहने वाले सभी निवासी जल्द से जल्द संवेदनशील क्षेत्र को खाली करें ताकि संभावित जान माल की हानि से बचा जा सके। मॉनसून के आगमन के साथ लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सावधानी बरतना आवश्यक है और उचित तैयारी से इसके प्रभाव को भी कम किया जा सकता है, जैसे कि जल भराव वाले क्षेत्र में न जाए और जलमग्न सड़कों, नालों या धाराओं को पार करने का प्रयास ना करें, क्योंकि पानी का स्तर और बहाव अपेक्षा से अधिक हो सकता है। भारी वर्षा, आंधी तूफान और तेज हवाओं के दौरान अत्यंत आवश्यक न हो तो घर के अंदर ही रहे। आपातकालीन संपर्क

संपर्क नंबर और हेल्पलाइन नंबर हमेशा अपने पास रखें। बिजली के उपकरण और वायरिंग को पानी से दूर रखें ताकि करंट लगने से बचा जा सके। जो लोग निचले या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं, वे सतर्क रहे और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर चले जाए। तूफान या बिजली गिरने के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों या अस्थायी ढांचों के नीचे शरण न ले। पीने का पानी, आवश्यक दवाइयां, टॉर्च और बैटरियां जैसे आपातकालीन सामान तैयार रखें। प्रशासन द्वारा जारी मौसम संबंधी चेतावनियों पर ध्यान दें और निर्देशों का पालन करें। बाढ़, गिरे हुए पेड़, क्षतिग्रस्त बिजली के खंभे या बंद नालों जैसी घटनाओं की तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना भी दें। और किसी भी इमरजेंसी नंबर के लिए आप डायल कर सकते हैं DEOC यानी कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेटिंग सेंटर का नंबर, जिसका नंबर है 9436824371। धन्यवाद।

0: लॉ आयरूप इबोम पनम लगा लॉ मलॉ सर्किट हाउस अनिनी लॉ डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्कशॉप बोको दूतो मीटिंग दलो डीपीडीओ लिजुम अत पंचायत लीडर कद दनम आनम इजें साइंग अकुरंग अलब्यांग अलिया माप इदोप 31 अक्टूबर 2026 दलोप दमंग अल्दुम सुपको मोल लोक कालन दोप पोलिदो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन बिक सुप नाम लगा लो पोनम लुनम पबो इबो नाम लोग लंगुम इरुम नाना मलो रिवास कैंपस रोइंग लो इगे बोतो पबो डम रिवास रोइंग लंग ज्ञाना प्रवादिनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सेंटर पुणे इगे बोला पबो डम ऑफलाइन ऑनलाइन अन्य लोकाई इबोतो अरुणाचल प्रदेश सो अतुक पिन्यो आईमाना कद कांगुल इगुल ला मंगुल लानम लगा प राजीव गांधी यूनिवर्सिटी लॉक ICMR AITS प्रोजेक्ट टीम कंसल्टेटिव कॉम स्टेक होल्डर मीटिंग को मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल एंड एडवोकेट अमला राजीव गांधी यूनिवर्सिटी लॉ इगे बोतो मीटिंग दलो अतुक पिन्यो आईमाना लगांग केंदो प मिला केन्नारुंग इंग अन्य कॉल पिलो मेंटल हेल्थ प्रोफेसर को पर दुमन गला बुलुक अगेर इपनम तकम एम कॉम पोकान तो ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पब्लिक लॉ दुग अदर बिना दलोक मोल एम दमंग मोना कद एम गबन इवन नाम एविक्शन पबो एम सिलो लोक इलन दुंग वार्ड नंबर 19 निर्जुली लॉ लोकल अमी कद लोक कॉम्प्लेन बिनाम एम काला बोजेरुंग मोल को इवन तोको सिकना एविक्शन पबो सिम अरुणाचल प्रदेश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2019 सेक्शन 247 आरंग लोक इबोम दुंग जॉइंट कमिश्नर कोडा लासा बु पोकान दोने सिकना एविक्शन पबो सिम दादी तकम दनम अनम दलोक टाउन एम कामपो पर दुबोम पनम लगा प मुदुंग अमला पोकान दो सातन्ना कदर सियुम के अदिलुतात ए दबोंग तन्ना के दरे सीयूम के आदि लुतात एम तारोंग लो सुपाक नलु आदि मिरी पबोलोक तत पाये सीयूम के मिरी पबोसो नलु करा यालुम पे आलोलु बंग के मिरी को तत पाये
1: डियर लिसनर्स, अभी आप सुन रहे थे आदि श्रोताओं का समाचार। इस कार्यक्रम को आगे सुनने के लिए आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्स तथा DRM 666 किलोहर्ट्स पर। या फिर आप न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी आकाशवाणी ईटानगर एवं अरुण FM के सभी कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM है जिसे आप सुन रहे हैं FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के कलाकार।

कार्यक्रम आज की कलाकार की शुरुआत हो चुकी है वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग सॉन्ग्स के संग, जिसे आप सुन रहे थे नीति मोहन के आवाज में। तो बिल्कुल आप जान ही गए होंगे कि हमारे आज के कलाकार है नीति मोहन। बचपन से गायन के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा के जौहर दिखाने वाली नीति मोहन सिंगिंग की दुनिया में अपनी खास पहचान बना चुकी है। तकरीबन दो दशक पहले एक म्यूजिक टैलेंट शो के दौरान हजारों गायकों को हराकर नीति को पॉप स्टार बनने का मौका मिला। उन्होंने और उनके साथी विजेताओं यानी जिमी फेलिक्स, संगीत हल्दीपुर और वसुधा शर्मा ने आसमा नाम का एक बैंड तैयार किया था, जिन्होंने चंदू के चाचा समेत कई चार्ट बस्टर्स तैयार किए। और उस वक्त इस म्यूजिक बैंड का हिस्सा बनने का समान मौका मिला नीति मोहन को।

श्रोता दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम आज के कलाकार में हम पेश करते हैं आज के आर्टिस्ट के कुछ नगमे और साथ ही बातें करते हैं उन्हीं के बारे में। तो आज इस अंक में हम बातें करेंगे नीति मोहन की और पेश करेंगे उन्हीं के गाए हुए नगमे।

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Pay Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 litre dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: इश्क वाला लव, जियारे और सौ आसमान जैसे हिट फिल्मों की लंबी फहरिस्त के साथ नीति ने अपनी कड़ी मेहनत से खुद को इस मकाम तक पहुंचाया है। उन्हें ये सब एक केक वॉक के समान लगता है, मगर साथ ही वो कहती है कि चाहे कोई भी क्षेत्र हो, महिलाओं को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है।

0: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with Surround Sense by Artemis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: सुन रहे हैं आप कार्यक्रम आज के कलाकार और हमारे कलाकार है नीति मोहन. क्या आप जानते हैं कि नीति मोहन ने साल 2013 में संगीत की दुनिया में नई प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित आरडी बर्मन अवार्ड से नवाजा गया था. इसके अलावा उन्हें जीआरए गाने के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का नॉमिनेशन भी मिला था. इसके अलावा आईफा अवार्ड्स, मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स, जी सिने अवार्ड्स भी नीति ने अपने नाम किया था.

नीति सामाजिक कार्यों में भी आगे रहती है। उन्होंने 2014 में कश्मीर बाढ़ पीड़ितों के लिए फंड जुटाने वाले चैरिटी कंसर्ट में परफॉर्म किया था और वो बेटियों के शिक्षा यानी गर्ल चाइल्ड एजुकेशन से जुड़े अभियानों का भी समर्थन करती है।

0: चल तेरे इश्क में पर जाते हैं। सुन रहे थे आप यही गीत फिल्म गदर 2 से नीति मोहन और उनके साथियों के आवाज में। तो दोस्तों, कार्यक्रम आज के कलाकार के इस अंक में बस इतना ही। बताना चाहेंगे कि अब से कुछ ही क्षणों में आप सुन पाएंगे निशी श्रोताओं का समाचार। आप बने रहे
1: आकाशवाणी इटारनो पोकोमा हिलीपोर अलो लूम नन अजे उरुम ग कनबाजे रेम थानमलम अलमेल सुरुंग निसि आम आरम मोरंजी ग्रेम थानगे दत्ता छोब सुरुंग जिपयम तापा छोरे जबजनशी नरम आखोम हर पुबाबला इंटीग्रेटेड ट्रैवल डेवलपमेंट एजेंसी नेला इंटीग्रेटेड ट्रैवल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ने अलिया मोदकुब नेशनल कॉन्क्लेव कवाहम सिलो नितने दिल्ली लो प्रेसिडेंट दनद्राफोदी मुर्मू ये मोको जिप कुमखल में पातो ओकशिगन आलो लो प्रेसिडेंट दन मुर्मू ये आगुमा जाफकल रेड कुलासो डेवलपमेंट हम नामग नमतिर नामया लोला नामपोम ग पुमतिर पोमया कोक थलो इंच इलेन मोदकुब रेड कुने हमले जाफकन बखम तो ओक सोजगो दब ट्रैवल उतरनी मेगने गिरह सरकार ग ओस ओस स्कीम ग लुक लोक आगम आहम अरबे चमा बमा कुनाब लुक लो एच अलबे मेदिक दुकने हमला दन मुर्मू ये चपता पुकुनामा ओक सिजाग जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 हम मनागल रिक लो रिमी ग नाम सोक कॉन्क्लेव गवा हम बाग गग दुकुना में सो चेन्नी वाला फिन स्टेट लोकला यूनियन टेरिटरी एफ लोक निगद ह सोक कॉन्क्लेव गवा लो रेपा दापा जिन्या दुकुना हम में पा था तो रेबल का मिनिस्टर स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स ओक टेक्सटाइल पवित्र मार्गरेटा ये सोक आर्नग न्या आला तोलग ऑफिशियल ब आलो लुनी गोब लुआरस्यांग डिस्ट्रिक लो कालिक जिरकुन हम मे पातो ओक रय लो का मिनिस्टर ग कालिक जिरग दिनोसो ने डिस्ट्रिक कुसो कोमरा गदा मुल लो ओस ओस इंफ्रास्ट्रक्चर ला डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कुदु काम रिदरिपा जिना मुल हम कागो बुगो जिरकुन हम मे पाथा दो ओक्सोक तायो लो बुये ऑफिशियल्स ला पब्लिक हम रेगता ग ने निगिद ग कोऑर्डिनेशन क बा हम उबु गलो ब दोगता ग ग ग्रीक ला डेवलपमेंट कुदु काम रिग पा कुनाम हम कादर तापा जिग्रे ला डिस्ट्रिक लो अलव सिलेन ग्रेन मोस ग लुक लो क आगम आहम जाबका मिसन्यार कुन हम पाथा तो ओके मिनिस्टर का काली जीता के लो रिगोमेंगो हम अलवर रिकर्मिंग कर ला आप जीत कुब मोर का फॉल आल हो लोअर शियांग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोऑर्डिनेशन के बाद गो दो गग्री कला सोरी लो का मिनिस्टर का डिस्ट्रिक्ट लो काली जीत तनम लेगा बे योग्री को मेंगो हम अलव रिगुर जिला आप साधे हुकने लुक लो का आगम आ मुल्लू हम मेगो जाप का मिस न्याप कुम हम में पाता तो सरकार है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार 2026 लेगा बन नॉमिनेशन पोता हम जिलिक तुका हम ला तो मुदु पुनम ओक्सो का नॉमिनेशन पोता हम सो का आरने का तेल फोल का अलचुम गोला लोके नान तल गोब जितिर मोर कुने ओक होमे आ ओस ओस नाम ते लो केले के माचे अलब रिन ला गोरा लगा बे अलब रिचमिन जी कुने एनवायरमेंट लो ला स्पोर्ट्स आर्ट ओक कल्चर ओक साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी लो अलब रिन दागलन कुने गुते ने सो का यूनाम अमेन हम प्रेसिडेंट ये जीजी का दुकुन में हम में पादो ओक सो का अमेन यूनाम हम पाला देन गुते ग नॉमिनेशन पोता हम नेशनल अवार्ड पोर्टल ग अवार्ड्स डॉट गोव डॉट इन डॉट लोक लारिशन यू ब्रिक ने हम ला मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन ओक चाइल्ड डेवलपमेंट ह जापा जिक दुकुन एक भारत श्रेष्ठ भारत अरा लोक रेबगनम लगाव मोर्ग फोर आलहो ईटानगर लोक बाब लो तेलंगाना गला सिक्किम ओक ग्वा स्टेट गुद ग फाउंडेशन दे आलोहम मना ग कल अरुणाचल प्रदेश स्टेट ग गवर्नर के टी परनायक ये न्यूग हावो निम स्टेट ग पास्ट लेती अनागा पर्नायक आजेन मना मिंग कुमा ओक तेलंगाना ला सिक्किम ओक गोवा स्टेट लोक निग दिने अलबका हमला कुमलु जुगलु जिग्री क्लास सो बुपुल ग मोक हम अलब सिलन गलन मोतो खूब ओस ओस नाम ते लो स्टेट ओम ग रिजिमेन जु कुनम आगम आमलु हम गवर्नर ये जापा जिकन म हम मेम पा दो ओक अरुणाचल प्रदेश स्टेट ग आगम हम गवर्नर ये जापा तागरी क्लास ओक स्टेट एप ह नि नि ग ट्रेडिशन हम ला ट्रैवल कल्चर एर कुमा ब दोन हम अलग लोक युक यारा मोलिन कुनम ग अरब पगमी रिमी सिग्रिक ला टूरिज्म ग यराह अरकुमा ब दोत कुने हम ला जाकने ब हम तो Isem tipa moso koro komcho chulip jise ham kaya madukuba morga fol alaho riha jale jiban mission 2.0 ara law memorandum of understanding ham Arunachal Pradesh te tega agent ba sign mumisip kuba khal mempado. Oka Ministry of Jal Shakti la Arunachal Sarkar baniga memorandum of understanding ham sign mumisip live program Rikoku law chief minister dharma pema kantu la PHC minister dharma mana tung wenchin dopa dapa ming pukna mahal mempa tato. Oka ist tego namtelo alba tipa vipa modukuba soka jalajivan mission 2.0 sim shine mumiship kumahal la chief minister dharma pema kantu ya social media la post muluk la japaga greek la so ist isiham tuchit Tilen Albert Tupagupa Mane Gutne Albert Tupagupa Mod Bala so Pulomistarga Barotham Alba Silen Guren Gadba Megasaga Kunam Ham Ripagman Paku Jila Namche Namte Mulu Lo Korokom Choham Alba Chulug Jidukuba Rig Tagdukunaba Hamla Japapukunaba Hamto Okar Ryuga Jale Sakti Minister Shiar Fatil Nela Minister Rested for Jale Sakti Samana Buniga Dokulo Soka Memorandum of Understanding Ham Sign Mumiship Kumahab Mempata Doka Srungan Shipuya Herbo.
2: Shiagazvani Tanapukuma Soku Tanigate Srum Nulu Tanataramga Agomba Tapachore.

सुन रहे थे आप निशी श्रोताओं का समाचार। इस कार्यक्रम को आगे पूरा सुनने के लिए आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी ईटानगर का रुन FM है जिसे आप सुन रहे हैं FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

बिल्कुल, यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और दोस्तों, अब वक्त हो चला है हिंदी फिल्मी गीतों के कारवां का। तो इस अंक में आगे हम आपके लिए पेश करने वाले हैं कुछ नगमे और गीत हर जॉनरा से, कुछ प्यारे, कुछ धमाकेदार और कुछ ऐसे जो यूं ही दिल को छू जाए। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि संगीत का ये सफर अभी जारी है। हाँ, इस अंक में हम आपके लिए पेश करेंगे बैक टू बैक नगमे और कुछ ब्रेक्स के संग, क्योंकि जिंदगी में ब्रेक लेना जरूरी है। तो चलिए बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के पहले गीत की ओर।

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Pay Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: ये है आकाशवाणी ईटानगर कारण FM 103.1 MHz पर, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात. और दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों का कारवां. इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं नगमों और गीतों का एक रंग बिरंगा गुलदस्ता, हर जॉनरा से. कुछ प्यारे, कुछ धमाकेदार और कुछ ऐसे जो खामोशी से दिल के किसी कोने को छू जाए.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार ईटानगर के वासियों, मौजूदा मानसून को देखते हुए ईटानगर राजधानी क्षेत्र में भूस्खलन, बाढ़, सड़क अवरोध की आशंका हो रही है। यदि अग्रिम सावधानी नहीं बरती गई तो मानव जीवन और संपत्ति की हानि होने की पूरी संभावना है। अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम चेयरमैन ऑफ DDMA कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्री तोको बाबू आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर के रहने वाले सभी निवासी जल्द से जल्द संवेदनशील क्षेत्र को खाली करें ताकि संभावित जान माल की हानि से बचा जा सके। मॉनसून के आगमन के साथ लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सावधानी बरतना आवश्यक है और उचित तैयारी से इसके प्रभाव को भी कम किया जा सकता है, जैसे कि जल भराव वाले क्षेत्र में न जाए और जलमग्न सड़कों, नालों या धाराओं को पार करने का प्रयास न करे, क्योंकि पानी का स्तर और बहाव अपेक्षा से अधिक हो सकता है। भारी वर्षा, आंधी तूफान और तेज हवाओं के दौरान अत्यंत आवश्यक न हो तो घर के अंदर ही रहे। आपातकालीन संपर्क नंबर और हेल्पलाइन नंबर हमेशा अपने पास रखे। बिजली के उपकरण और वायरिंग को पानी से दूर रखे ताकि करंट लगने से बचा जा सके। जो लोग निचले या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं, वे सतर्क रहे और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर चले जाए। तूफान या बिजली गिरने के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों या अस्थायी ढांचों के नीचे शरण न ले। पीने का पानी, आवश्यक दवाइयां, टॉर्च और बैटरियां जैसे आपातकालीन सामान तैयार रखें। प्रशासन द्वारा जारी मौसम संबंधी चेतावनियों पर ध्यान दें और निर्देशों का पालन करें। बाढ़, गिरे हुए पेड़, क्षतिग्रस्त बिजली के खंभे या बंद नालों जैसी घटनाओं की तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना भी दें। और किसी भी इमरजेंसी नंबर के लिए आप डायल कर सकते हैं DEOC यानी कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेटिंग सेंटर का नंबर, जिसका नंबर है 9436824371। धन्यवाद।

0: ये उन दिनों की बात है जब हम पागल पागल फिरते थे। फिल्म तुमसे अच्छा कौन है कि इसी गीत के साथ ही हिंदी फिल्मी गीतों का कारवां का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। आपको बताना चाहेंगे कि अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे क्षेत्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम अपना गीत।
1: श्रोता मित्रों नमस्कार। कार्यक्रम अपना गीत में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं आपके रेडियो साथी गैर अतः। यह श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ज। अपना गीत कार्यक्रम के आज के इस अंक में हम प्रकृति और हमारे पूर्वजों से जुड़ी कुछ बातें करना चाहेंगे जो कहानियां एवं अनुभवों पर आधारित होंगे। और हाँ, बातों के बीच अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग जनजातियों का गीत तो शामिल होंगे ही, क्योंकि ये कार्यक्रम है ही गीतों का। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं मिजुमिसमी गीत से, जिसे गाया है बाफेमसो ताइंग ने।

दोस्तों, आजकल का जो दौर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है, जहां हमारे पास लगभग हर चीज के लॉजिक होते हैं। मगर जरा पीछे मुड़ के पुराने जमाने में, खासकर हमारे अपने गांव के बारे में जब सोचती हूँ, तो देखती हूँ कि वे कैसे हर चीजों को नेचर के साथ, प्रकृति के साथ जोड़ कर रखते थे और कितनी बारीकी से चीजों का आकलन करते थे, चीजों को नोटिस करते थे।

छाता है कि कैसे अपना कैलेंडर नेचर के जरिए हमारे पूर्वज बनाते थे या जानते थे। पुराने जमाने के लोग हर सीजन को पेड़ पौधे या पक्षियों की आवाज से या उनकी दशा से पहचानते थे। कौन सा पेड़ कब किस सीजन में फूलते हैं, फलते हैं या किसके पत्ते किस समय में रंग बदलता है, कौन सी चिड़िया किस सीजन में चहकता है, कौन रोता है आदि।

अभी आप सुन रहे थे अनीता लिंगी की आवाज में ईदू गीत। श्रोता ट्यून किया है आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज और जिस पर कार्यक्रम चल रहा है अपना गीत। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं ये निशी गीत गोरा तारुप की आवाज में।

श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में बस हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि भले ही जमाना टेक्नोलॉजी का हो, साइंस का हो, पर क्यों ना हम भी कुछ वक्त नेचर के साथ बिताएं? क्यों ना इन बड़े बड़ी इमारतों से दूर, हरियाली से भरे उन पहाड़ों में, उन गांवों में जहां साइंस और टेक्नोलॉजी का दबदबा नहीं है, वहां जाए और उन पक्षियों को देखे और सुने ये वादियां हमसे क्या कहना चाहती हैं, क्या दिखाना चाहती हैं।

जानू तेची की आवाज में आप सुन रहे थे तांगसा गीत, और अपना गीत कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं तुत्सा गीत सोमगाक सोंगटेंग की आवाज में।

श्रोता, इसी तुत्सा गीत के साथ कार्यक्रम अपना गीत का आज का ये अंक यहीं पर संपन्न होता है। एक और नए अंक के साथ फिर आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी गैर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: सुन रहे थे आप कार्यक्रम अपना गीत या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है और अब प्रस्तुत है युवाओं का कार्यक्रम युवा वाणी।
1: ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है और आप सुन रहे हैं युवाओं का प्रेरणादायक कार्यक्रम युवा वाणी। मैं हूं आपकी साथी फ्लोरेंस शर्मा और आप सभी युवा श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोतागण, आज विश्व पर्यावरण दिवस की इस सुनहरे अवसर पर हम सभी को प्रकृति और पर्यावरण के प्रति अपने जिम्मेदारियों को स्मरण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। स्वच्छ वायु, निर्मल जल तथा हरित पर्यावरण मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। आइए हम सभी मिलकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लें और एक स्वच्छ तथा हरित भविष्य के निर्माण में अपना योगदान दें। आज विश्व पर्यावरण दिवस के सुनहरे दिवस पर हम निवेदन करने जा रहे हैं एक विशेष संदेश। इस संदेश को प्रस्तुत किया है डॉक्टर पीजे शर्मा, जो कि अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज अर्थात स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से है। उम्मीद करती हूँ उनके ये अनुभवी विचार हमारे युवा श्रोताओं को अच्छे लगेंगे और इसके बारे में मंथन करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो बिना किसी विलंब किए श्रोतागण, हाँ ये सुनते हैं डॉक्टर पीजे शर्मा का प्रेरणादायक संदेश विश्व पर्यावरण दिवस 2026।
2: कभी अपने सुबह की ताजी हवा में सांस लेते हुए यह महसूस किया है कि प्रकृति हमें बिना किसी शर्त के जीवन देती है। क्या कभी पेड़ों की छाव में बैठकर आपने सोचा है कि यदि ये वृक्ष, ये नदियाँ और यह धरती एक दिन हमसे रुच जाए तो हमारा भविष्य क्या होगा? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या हम अपने आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और स्वच्छ पृथ्वी दे पाएंगे? नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस 2026। आज का यह अवसर केवल एक दिवस मनाने का अवसर नहीं है, बल्कि यह स्वयं से प्रश्न करने का दिन है कि हम अपने पर्यावरण के लिए क्या कर रहे हैं। हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके और उन्हें प्रकृति के महत्व का एहसास कराया जा सके। यह हमें याद दिलाती है कि हमारा भविष्य किसी मशीन से नहीं बल्कि प्रकृति से जुड़ा हुआ है। विज्ञान, तकनीक और आधुनिक सुविधाएं जीवन को आसान बना सकती है, लेकिन जीवन देने का कार्य केवल प्रकृति ही करती है। याद है मृत संजीवनी के बारे में? वो भी प्रकृति से ही ढूंढ के लाए गए थे। 1973 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई और आज यह दुनिया के सबसे बड़े पर्यावरण अभियानों में से एक बन चुका है। भारत सहित 140 से अधिक देश इस दिन अनेक कार्यक्रमों, रैलियों, वृक्षारोपण अभियानों और जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं। प्रकृति हमें निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाती है। वृक्ष कभी अपने फल स्वयं नहीं खाते, नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती और सूर्य बिना किसी भेदभाव के सबको प्रकाश देता है। इसी प्रकार हमें भी अपने समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए जिम्मेदारी निभानी चाहिए। याद रखिए, यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति भी हमारा रक्षा करेंगे, क्योंकि मानव और पर्यावरण का संबंध प्रतिस्पर्धा का नहीं बल्कि सह अस्तित्व का है। इस बार 2026 साल की थीम है

प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग, जल स्रोतों का दूषित होना और लगातार बढ़ता तापमान हमारी धरती को धीरे धीरे कमजोर बना रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम का संतुलन बिगड़ जा रहा है। कहीं अधिक गर्मी पड़ रही है तो कहीं अचानक बाढ़ और तूफान लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जंगलों में आग लग रही है और कई जीव जंतु विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। आज आवश्यकता केवल चर्चा करने की नहीं बल्कि कार्रवाई करने की है। यदि हर व्यक्ति अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाए तो बड़े परिवर्तन संभव है, जैसे बिजली की बचत करना, पानी को व्यर्थ न बहाना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, प्लास्टिक का उपयोग कम करना और स्वच्छता बनाए रखना। ये छोटे कदम मिलकर पृथ्वी को सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ी शुरुआत बन सकते हैं। भारत जैसे देशों में प्रकृति को सदैव पूजनीय माना गया है। यहाँ नदियों को माँ का स्थान दिया गया, वृक्ष को देवतुल्य समझा गया और पर्वतों को श्रद्धा से देखा गया। यह केवल आस्था नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान और संरक्षण का संदेश भी है। हमारे त्योहारों और परंपराओं में भी प्रकृति संरक्षण का संदेश छिपा हुआ है। वृक्षारोपण, जल संरक्षण, पशु पक्षियों के प्रति दया और स्वच्छता जैसे संस्कार भारतीय जीवन पद्धति का महत हिस्सा रहे हैं। हमें इन्हें केवल परंपरा के रूप में नहीं बल्कि जिम्मेदारी के रूप में अपनाना होगा। लेकिन समय के साथ आधुनिकता और भौतिक सुविधाओं के दौर में मनुष्य प्रकृति से दूर होता चला गया। विकास के नाम पर जंगलों की कटाई बढ़ी, नदियां प्रदूषित हुई और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन होने लगा। इसका परिणाम आज जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हमारे सामने दिखाई दे रहा है। पर्यावरण की रक्षा की शुरुआत हमारे घर से होती है। जब हम अपने आसपास सफाई रखते हैं, पौधे लगाते हैं, पानी बचाते हैं और दूसरों को भी जागरूक करते हैं, तभी एक सशक्त परिवर्तन जन्म लेता है। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, स्वच्छ हवा, जल, भोजन, जीवन और सुंदरता। अब हमारी बारी है कि हम उसे कुछ लौटाएं, क्योंकि यदि प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी मानव जाति भी सुरक्षित रहेगा। प्रकृति मानव जीवन की पहली और सबसे महान शिक्षक है। जब इंसान ने पहली बार उड़ते हुए पक्षियों को देखा तभी उसके मन में आकाश में उड़ने का विचार आया। जब उसने नदियों को बहते देखा तभी उसने गति और निरंतरता का महत्व समझा। अर्थात मानव सभ्यता का विकास भी कहीं न कहीं प्रकृति की प्रेरणा से ही संभव हुआ है। अगर ध्यान से सुना तो जरूर ये महसूस किया होगा आप लोगों ने कि संतुलन का दूसरा नाम है प्रकृति। यहाँ हर जीव, हर पेड़, हर नदी और हर मौसम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि इस संतुलन में थोड़ी भी गड़बड़ी होती है तो उसका प्रभाव पूरे पर्यावरण पर दिखाई देता है। आज आधुनिकता और विकास के दौर में मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है। बड़े बड़े भवन बन रहे हैं लेकिन पेड़ कट रहे हैं। नई नई फैक्ट्रियां खुल रही हैं, लेकिन हवा और पानी प्रदूषित हो रहे हैं। तकनीक ने जीवन को आसान बनाया है लेकिन उसी के साथ पर्यावरण पर दबाव भी बढ़ा है। आज पूरी दुनिया में एक नई सोच तेजी से विकसित हो रही है, वो है सस्टेनेबल लिविंग। अर्थात ऐसा जीवन जिसमें विकास भी हो और प्रकृति का संतुलन भी बना रहे। अब लोग धीरे धीरे यह समझने लगे हैं कि केवल सुविधाएं बढ़ना ही प्रगति नहीं है बल्कि पृथ्वी को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ना ही वास्तविक विकास है। पहले लोग बिना सोचे समझे संसाधनों को उपयोग करते थे, लेकिन अब जागरूकता बढ़ रही है। लोग रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं। सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन, जैविक खेती
और पर्यावरण अनुकूल

0: तकनीक को अपनाया जा रहा है। यह परिवर्तन धीरे धीरे ही सही, लेकिन भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मीट इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा परिमाण की मीथेन निकलते हैं। ये एक पोटेंट गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दी मीट एंड लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अप्रोक्सीमेटली 11 to 19% ऑफ ऑल ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड यूजेस अबाउट 83% ऑफ ग्लोबल फार्मलैंड डिस्पाइट प्रोवाइडिंग ओनली 18% ऑफ ह्यूमन कैलोरीज। दिस मैसिव एनवायरमेंटल फुटप्रिंट स्पैन्स ग्रीन हाउस गैसेस, सीवियर वाटर यूजेस एंड लोकलाइज्ड लैंड पोल्यूशन। युवाओं की भूमिका इस बदलाव में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आज की युवा पीढ़ी नई सोच रखती है, नई टेक्निकों को समझती है और समाज को प्रभावित करने का क्षमता और दक्षता भी रखती है। यदि युवा पर्यावरण संरक्षण को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना ले तो आने वाले वर्षों में बहुत बड़ा परिवर्तन संभव है। आज कई युवा प्लास्टिक मुक्त अभियान चला रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान में भाग ले रहे हैं और सोशल मीडिया का माध्यम से लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। यह केवल छोटे प्रयास नहीं है बल्कि एक बेहतर भविष्य की शुरुआत भी है। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमेशा बड़े संसाधनों को आवश्यकता नहीं होती। कई बार छोटी आदतें ही सबसे बड़ा बदलाव लाती है, जैसे अनावश्यक बिजली बंद करना, पानी की बचत करना, कचरे को अलग अलग रखना, कागज का कम उपयोग करना और आसपास सफाई बनाए रखना। हम भूलते जा रहे हैं कि प्रकृति केवल संसाधन नहीं है बल्कि हमारा जीवन है। यदि जंगल नहीं रहेंगे तो वर्षा का संतुलन बिगड़ेगा। यदि नदियां प्रदूषित होंगे तो जीवन संकट में पड़ जाएगा। यदि हवा शुद्ध नहीं होंगे तो स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए प्रकृति की रक्षा करना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं बल्कि अपने अस्तित्व का रक्षा करना है। तो आइए इस विश्व पर्यावरण दिवस पर हम यह संकल्प ले कि हम प्रकृति को केवल देखेंगे नहीं बल्कि उससे सीखेंगे भी, ताकि हमारा जलवायु सुरक्षित रहे और हमारा भविष्य हरा भरा और खुशहाल बन सके। आइए हम सभी और एक संकल्प ले कि हम केवल प्रकृति का लाभ नहीं उठाएंगे बल्कि उसकी रक्षा भी करेंगे। हम अपने आने वाले कल को हरा भरा, स्वच्छ और सुरक्षित बनाने में अपना योगदान देंगे, क्योंकि प्रकृति से प्रेम ही भविष्य से प्रेम है। ए ट्रू अफेक्शन फॉर फ्यूचर जनरेशन। और पर्यावरण की रक्षा ही मानवता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
1: धन्यवाद डॉक्टर पीजे शर्मा। श्रोतागण, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पीजे शर्मा का संदेश, जो अरुणाचल प्रदेश के डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज यानी कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से है। उम्मीद करती हूँ उनके ये अनुभवी विचार हमारे युवा श्रोताओं को अच्छा लगा होगा और पर्यावरण संरक्षण के इस महत्वपूर्ण विषय पर आप लोग मंथन करेंगे। इसी के साथ श्रोताओं, चलिए सुनते हैं आज का पहला देशभक्ति गाना।

0: सुन रहे थे कुछ देशभक्ति गाने और इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मैं आपके साथ ही फ्लोरेंस शर्मा आपसे विदा लेती हूँ ये वादे के साथ कि अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय बुधवार को। तब तक के लिए जुड़े रहिए आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के साथ। धन्यवाद।
1: दिल से दिल तक बात पहुंची, मिलते मिलते सनम, ओ
2: गीत संगीत
3: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
2: प्यार भरे अल्फाजों में
3: दिल से दिल की बात
2: बस आपके नाम।
3: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

स्वागत है आप सभी लिसनर्स का सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों के कारवा भूले बिसरे गीत में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर खैरून FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

फिर वही दिल लाया हूँ इसी गीत के साथ ही, इसी फिल्म के गीत के साथ ही हमने शुरू कर लिया है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

चुप हूं तो पत्थर ना समझना मुझे, कि चुप हूं तो पत्थर ना समझना मुझे। दिल पर असर हुआ है किसी अपने की बात का, लाखों है यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता। सुन रहे थे आप यही गीत महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म किस्मत से। ये है सदाबहार हिंदी फिल्म में गीतों का कारवा, भूले बिसरे गीत, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। श्रोता दोस्तों, ये कोई शायरी नहीं, ये है गीत के बोल जो हम अब आगे पेश करने वाले हैं, फिल्म आप तो ऐसे ना थे। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने।

श्रोता दोस्तों, इसी गीत के साथ ही सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यवाह यहीं पर समाप्त होता है और साथ ही अब हम हमारे तीसरी प्रसारण सभा के समापन पर आ पहुंचे हैं। इस सभा के सभी कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारा साथ दे रहे थे तमाम FM ट्रांसमीटर के सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक ती तांगजांग तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम और मैं आपकी रेडियो दोस्त सुलोकना। अब आप सभी श्रोताओं से इजाजत चाहती हूं। हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की ओर। आप सुनेंगे FM गोल से रिलेट कार्यक्रम। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। हम कल सुबह फिर मिलेंगे सुबह के 5:48 पर। शुभ रात्रि। जय हिंद।

0: पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अखिल जी आपके साथ, आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस साल मौसम विभाग ने जो मानसून का पूर्वानुमान जारी किया है उसमें डायनेमिक और सांख्यिकीय मॉडल के क्या संकेत हैं? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमारी पूर्वानुमान तकनीक भी बदली है और उसमें बहुत ज्यादा एफिशिएंसी भी देखने को मिली है।
1: जो भारत मौसम विज्ञान विभाग जो नॉर्मल फोरकास्ट को हम बोलते हैं, जो मानसून की वर्षा के लिए फोरकास्ट जारी करता है, इसके लिए अब भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है पिछले कुछ वर्षों से एक डायनेमिक जो है मॉडल का उपयोग कर रहा है, जिसमें स्टैटिस्टिकल यानी कि सांख्यिकीय से संबंधित जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसके साथ साथ जो डायनेमिकल मॉडल्स होते हैं क्लाइमेट के वो भी रन किए जाते हैं। फिर उन दोनों को आधार बना करके जो वर्षा का क्या रेंज रह सकता है आने वाले मॉनसून के सीजन के दौरान, ऋतु के दौरान, उसको वह जारी किया जाता है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों से अगर आप उसके डेटा को भी देखेंगे तो जो ये मॉनसून का जो पूर्वानुमान जा रहा है यानी कि फोरकास्ट में जो एक्यूरेसी है उसमें भी काफी जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफी बेहतर हुई।
0: जी डॉक्टर डबास, चूंकि आप कृषि वैज्ञानिक हैं और जब आप बोलते हैं तो भारत के किसान बहुत गौर से सुनते हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान को देखते हुए इस खरीफ के मौसम में किसानों को किस तरह की फसल योजना अपनानी चाहिए? क्या कम पानी वाली या जल्दी पकने वाली किस्मों पर ध्यान देना उन्हें चाहिए?
2: आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस बार हमें उम्मीद है कि ऊपरी वर्षा कम है, 10% के करीब कम बता रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, क्योंकि फसल जो है पानी से ज्यादा जरूरी तो कौन कौन सी स्टेज पे उसको कोई सूखा ना पड़े, तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जहां तक हमारी कृषि विज्ञान का सवाल है, इस समय हमारे पास 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र है, लगभग 80 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है और आईसीआर इंस्टीट्यूट है जो कि किसानों को गाइड करने के लिए और भारत सरकार की तरफ से एक किसान कॉल सेंटर 24 आवर काम कर रहा है। हमारे पास ऐसी किस्में हैं जो कम पानी में तैयार हो जाती हैं, हमारे पास कुछ ऐसी विधियां हैं जिसमें कम पानी लगता है और पैदावार अच्छी मिलती है, और साथ साथ में हमारे जो किसान है उसको हमें शिक्षित करना है कि जो भी पानी जमीन पे गिरे उसमें कम से कम रन ऑफ से मतलब फ्लड के तौर में बहे, ज्यादा से ज्यादा पानी हमारी जमीन मिट्टी के अंदर जाए और उसका सदुपयोग कर पाए, और पानी जब फसल को होता है उसके साथ साथ में उससे फसलों के बहुत सारे दुश्मन है जो उस पानी को चुराने की कोशिश करते हैं, इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है खरपतवारों का। तो अगर हम हमारी जो कृषि क्रिया ऐसे करेंगे जिससे कि पानी की भी बचत हो, खरपतवार का नियंत्रण हो, तो ये जो 10% पानी की जो वर्षा इस बार हमें कम पूर्वानुमान है, इसके बावजूद भी हम खरीफ के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं और अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। तो मैं अपने किसान भाइयों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि बीज के साथ साथ हमें एक तो जितने भी हमारे पास देसी खाद हैं, खासकर टेकुर्डी

0: मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारा जो कृषि विज्ञान तंत्र है और साथ साथ में जो हमारा मौसम विभाग है, ये जब दोनों मिलके क्योंकि काम कर रहे हैं, इस समय मौसम विभाग की तरफ से हर आईसर इंस्टीट्यूट को, हर कृषि विज्ञान केंद्रों को काफी सूचना जाती है कि हफ्ते में के दो दिन बाद मंगलवार को शुक्रवार को
1: जी
0: कि नेक्स्ट 5 डे कैसा मौसम रहने वाला है, क्या पूर्वानुमान है, उसी के आधार पे हमारे कृषि वैज्ञानिक हर एक सब्जेक्ट के बैठते हैं और वो बताते हैं कि हमारे किसानों को कौन सा बीज बोना है, कब बोना है, कैसे बोना है, बीज की वो किसान ट्रीटमेंट किससे करना, उपचार कैसे करना है, और हमें इस हालात से निपटने के लिए हमारे साथ में हमारा जो प्रसार तंत्र है, खासकर हमारा दूरदर्शन मास मीडिया है और हमारे ऑल इंडिया रेडियो है और साथ में दूसरी जो चीजें हैं वो भी किसानों को एजुकेट करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: मुझे उम्मीद है कि हम इसका लाभ उठाएंगे, हम इससे किसी तरह हरास नहीं होने देंगे और इस विपरीत परिस्थिति को भी हम एक अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़े, उत्पाद की गुणवत्ता भी बेहतर हो, हम कीड़े मकोड़े बीमारियों का भी ठीक से प्रबंध कर पाए और साथ साथ में हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हुए हर बूंद का सदुपयोग करके अधिक से अधिक अन्न सब्जी फल और सभी फूल और सभी चीजें
1: आपसे ये
0: उगाएं।
1: समझना चाहेंगे कि अक्सर देखा जाता है कि देश में सामान्य मानसून का औसत तो ठीक रहता है, लेकिन कुछ राज्यों में सूखा और कुछ में बाढ़ आ जाती है। इस बार वर्षा के जो स्थानिक वितरण को लेकर मौसम विभाग का क्या आकलन है?
0: मॉनसून जो है वो हर साल एक नई तरह की परिस्थिति को लेकर के आता है, तो इस वर्ष भी जो मॉनसून में जो वर्षा है पूर्वानुमान दिया गया है उसके अनुसार वो करीब करीब 90% रहने की संभावना है, जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है यानी दीर्घ अवधि औसत का, जिसमें प्लस माइनस 4% की त्रुटि भी हो सकती है। अब ये जो वर्षा का पूर्वानुमान किया गया है ये अगले 4 महीनों के लिए जो है वो किया गया है, यानी कि जून से लेकर के सितंबर तक का। अब इसमें ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि जैसे आपने अभी बताया कि कुछ राज्यों में जो मानसून की वर्षा है वो कम हो सकती है, कुछ राज्यों में ज्यादा हो सकती है। इसमें अभी तक का जो स्थानिक जो हमारा प्रण है पूर्वानुमान का, उसमें ये है कि जो पूर्वोत्तर राज्य है यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहां पर जो वर्षा है वो करीब करीब सामान्य रहने की संभावना है उत्तर पूर्व भारत में, यानी कि जो लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी दीर्घावधि औसत का 94 से 106% तक की रेंज में वर्षा हो सकती है। वहीं मध्य भारत में और दक्षिण वैली भारत में 94% जो है दीर्घावधि औसत का उससे कम वर्षा रहने की संभावना है, उत्तर पश्चिम भारत में 92% यानी कि 92% से कम वर्षा रहने की संभावना है, यानी कि वर्षा जो है वो सामान्य से कम रहने की संभावना है। हालांकि इसमें ये भी जरूरत समझने की बात है कि ये जो वर्षा है ये बहुत ही इवन तरीके से चारों महीनों में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहती है, कभी किसी समय में ज्यादा वर्षा मिल जाती है, इसके वजह से कई बार फ्लड की सिचुएशन देखने को मिलती है, कई बार मौसम ब्रेक कंडीशन भी आती है जब वर्षा काफी घट जाती है। तो इसके लिए भारत मौसम विभाग लगातार पूर्वानुमान देता रहता है। इसमें जैसे कृषि के लिए अगर हम बात करें तो सप्ताह में 2 बार जो अगले 5 दिनों का विवरण दिया जाता है, इसके साथ साथ हर बृहस्पतिवार को बारिश से संबंधित जो है एक्सटेंडेड रेन फोरकास्ट जारी किया जाता है, जिसमें अगले 4 हफ्तों के लिए सप्ताहवार यानी कि हर सप्ताह में कैसा वर्षा रह सकती है उसका भी पूर्वानुमान जारी किया जाता है। इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि इसमें जो हमारा मुख्य रूप से जो मॉनसून कोर जोन है यानी कि वो क्षेत्र जो कि ज्यादातर मौसमी वर्षा पर जो निर्भर करता है कृषि के लिए, वहां पर जो है वर्षा का पूर्वानुमान भी जो हमारे अभी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है उसमें सामान्य से कम वर्षा की संभावना जो है वो दर्शाई गई है। तो जिसको देखते हुए जो मौसम की जो पूर्वानुमान किए जा रहे हैं स्थानिक स्तर पर भी और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के लिए, यानी कि जो हर दिन दैनिक रूप में पूर्वानुमान किए जाते हैं, इसके साथ साथ में जो एक्सटेंडेड रेंज यानी कि विस्तारित रेंज का जो पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग करता है उसका भी बहुत अच्छे से उपयोग होना बहुत जरूरी है, ताकि बहुत कुशल रूप से जो ये प्रिपरेटरी चीजें हैं उनको मैनेज किया सके, एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजों को मैनेज किया जाए।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर डबास, आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि जहां पर कम बारिश होने की आशंका जताई जा रही है वहां किसान किस तरीके से अपनी फसल का ध्यान रखें, और जैसा कि अभी डॉक्टर श्रीवास्तव बता रहे हैं कि कुछ राज्यों में ज्यादा बारिश की भी संभावना है, यदि मानसून के दौरान अचानक बहुत भारी बारिश होती है तो जल भराव से फसलों को बचाने के लिए किसानों को कौन से बुनियादी वैज्ञानिक उपाय पहले से कर लेने चाहिए?
0: हमारे जो किसान है वो हमें क्षेत्र वाइज हम उसको बांट सकते हैं, जैसे राजस्थान पूरा एरिया है, इसमें हम लोगों ने बहुत किसानों को आगाह किया हुआ कि उन्होंने खेतों पे टैंक बना रखे, तालाब बना रखे हैं, उनकी कोशिश होती है जो भी ज्यादा बारिश हो उसको टैंक में जाए। और इसी तरह से हमारे पूरे देश में सभी नदियों पे बांध बने हुए हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि अपने आवश्यकता के अनुसार पानी को इकट्ठा रखें और पानी को पूरा कितना हमारे पास पानी है कितने आगे बारिश

0: होने वाली है, कितना भी तोड़ना है, तो ये बैराज से हम लोग नियंत्रण करने की कोशिश सरकार करती है। और इसी का फायदा उठा के किसानों को भी हम गाइड करते हैं कि जिन क्षेत्रों में अधिक बारिश होने वाली है वहां पे हम धान की फसल या जो फसलें ज्यादा पानी चाहिए उसका रिकमेंड करते हैं। और ये भी हम किसान को आगाह करते हैं कि जो पानी खेत से निकालना है, क्योंकि जल निकासी भी बहुत जरूरी है, अगर हमें फसल अच्छी लेनी है और बरसात ज्यादा है तो वहां पे जल निकासी का भी होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब जल निकासी किसान करे तो इस आधार पे करे कि उसकी जो उपजाऊ मिट्टी भी ना जाए, फसल को नुकसान ना हो, और मौसम विभाग को ध्यान में रखते हुए इन बातों के, क्योंकि किसान की जितनी भी कृषि क्रियाएं आगे जो पूरे 4 मानसून के जो महीने रहेंगे वो हम लोग हर वीक में 2 बार बताते हैं किसानों को, और सभी कृषि विज्ञान केंद्र भी और सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी, हम ये बताना चाहते हैं अगर बरसात की संभावना है तो उसमें किसान को क्या करना है, क्या नहीं करना है और कौन सी विधि अपनानी है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा धान का ही,
1: जी
0: अगर धान की सब क्षेत्र नीचे है जिसमें पानी खड़ा होता है, तो हमारे पास धान के अलग अलग किस्में हैं जो अलग अलग उसको ऊंचाई में भी और पानी को भी सहन कर सकती हैं। और अगर बरसात कम हो रही है लेकिन हमें धान फिर भी पैदा करना, खासकर नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट में जाके, क्योंकि बासमती का हमारा एक्सपोर्ट लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा का है और इसमें हमें लगातार भी पैसा मिलता है और हमारा देश बासमती के नाम से काफी जाना भी जाता है, तो बासमती के में भी हमें एक तो डायरेक्ट फीडिंग के लिए बहुत सारी नई किस्में निकाली हैं जिसमें कि 35% पानी बचता है। इसी तरह से SRI विधि से भी अगर हम बासमती के चावल की खेती करते हैं तो 30 से 35% पानी बचता है और साथ में फसल भी अच्छी होती है, कीड़े बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी हम किसान को पहले से एजुकेट करके रखें जिससे कि किसान अपनी बचत करते हुए, और जहां पानी की संभावना बहुत कम है तो वहां हम किसानों को कहेंगे धान जैसी फसल ना लगा के या तो मक्का लगाएं या मोटे अनाज लगाएं या दलहनी फसल लगाएं, लेकिन जो भी फसल लगाएं उनमें खरपतवार नियंत्रण और निराई गुड़ाई ये एक विशेष योगदान है, इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि खरपतवार तो पानी के साथ साथ में न्यूट्रिएंट भी चुराई करते हैं, मतलब किसान से फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जो निराई गुड़ाई है वो एक फसल की जड़ों को एक ऐसा एटमोसफियर प्रदान करती है जिससे कि पौधे की जड़ें काफी ग्रोथ करती हैं और वो दूर तक के पानी के खींच लेती है और पानी एकदम से सीधा वाष्पीकरण से उड़ता नहीं है बल्कि जमीन में बना रहता है। और कुछ क्रिटिकल अवस्थाओं पर हम किसानों को बार बार ध्यान देते हैं कि इस समय हमें पानी की वो विधि अडॉप्ट करनी है जैसे ड्रिप सिंचाई है या स्प्रिंकलर विधि है, जहाँ पे हम कम पानी से भी ज्यादा लाभ उठा पाए। खासकर जब आपने दक्षिण भारत की बात की, मध्य भारत की बात की, जहाँ पे इस बार बारिश की थोड़ी संभावना कम लग रही है, तो वहाँ पे हम किसानों को उस किस्म की सलाह देते हैं। तो हमारे जो कृषि वैज्ञानिक वो भी तैयार है, साथ साथ में भारत सरकार ने अभी लास्ट तो लगभग 1 हफ्ता पहले ही एक मीटिंग ली है जिसमें सभी राज्यों के कृषि विभाग के जितने भी अधिकारी थे, साथ साथ में हमारी क्या योजना होनी चाहिए, हमारे पास कौन सी चीजों के कितने सीड हैं और किसान को सही समय पर सीड भी मिले, साथ साथ में उसके पास हमारे उर्वरक भी पहुंचे और किसान को सब सुविधाएं मिले, तो उसके लिए सरकार पहले से तत्पर होके ऑलरेडी कार्य योजना बना रही है। और इस समय जो हमारी कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR जो है, ये पूरे देश में इस महीने को किसानों को एजुकेट करने के लिए यूज कर रही है और कृषि वैज्ञानिक गाँव में जा रहे हैं उनको एजुकेट कर रहे हैं, तो हमारी तैयारी पूरी है। और तो वो हमारे प्रयास रहेगी किसानों को हम किस तरह से लागत को कम करने में मदद करें, कैसे पानी के संरक्षण में मदद करें, कैसे किसानों को तालाब और सब चीजों में गाइड करें, मल्चिंग इसमें एक बहुत बड़ा योगदान
1: जी
0: करती
1: बिल्कुल
0: है,
1: रवाज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
0: तो उन सब चीजों को हम काफी जोर दे रहे हैं
1: जी
0: और मुझे लगता है कि हमारा देश जो है तकनीकी तौर के तौर पे और उसमें हमारा सक्षम है और आप लोगों के सहयोग से हम बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, जब जलवायु परिवर्तन की हम बात करते हैं और जलवायु परिवर्तन के दौर में अल नीनो और ला नीना के जो संकेतक हैं वो तेजी से बदल रहे हैं, दो छोटे छोटे सवाल। पहले तो हमारे श्रोताओं के लिए अल नीनो और ला नीना को थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दें, और साथ ही उसी से जुड़ा एक सवाल यह है कि इस साल के मॉनसून पर इनका क्या और कितना असर देखने को मिल सकता है।
2: अगर हम एल नीनो को बहुत ही सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये एक तरह से ऐसी सिचुएशन होती है, ये इस तरह का सिचुएशन डेवलप होता है जो कि काफी दूर से ही भारतवर्ष के जो मौसम को प्रभावित कर सकता है, भारतवर्ष के कहे या अगर और बृहद रूप में समझे तो ये पूरे ग्लोबल जो वेदर सिस्टम्स है, जो वेदर के इवेंट्स हो रहे होते हैं, प्रभावित करता है। इसमें मुख्य रूप से अगर हम एल नीनो की बात करते हैं तो जो प्रशांत महासागर, जो भूमध्य रेखा के पास का प्रशांत महासागर है, वहां पर जो समुद्र की सतह है उसमें जो टेम्परेचर है, उसका तापमान जो है उसका धीरे धीरे वो बढ़ जाता है, यानी कि वो असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। जब प्रशांत महासागर का जो भूमध्य रेखा के पास समुद्र सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं अल नीनो, और जब ये समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से ये ठंडा हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं ला नीना। तो ये जो दो इवेंट है ये एक तरह से प्राकृतिक इवेंट है जो कुछ सालों के बाद जो हमें देखने को मिलते रहते हैं। जब समुद्र का पानी गर्म हो जाता है भूमध्य रेखा चाप महासागर में, तो इसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि जो हवाएं हैं, जो हवा की जो एक नेचुरल जो डायरेक्शन होता है उसमें उनका जो रुख होता है ये उसको बदलने का काम करता है। हवा जो भारत में जो मानसून को खींच कर लाने वाली हवाएं हैं ये उनको कमजोर करने का एक तरह से कार्य करता है, इसलिए एल नीनो का बहुत असर जो है काफी हद तक भारत के मानसून पर देखा जाता है। इन जनरल अगर हम बात करें तो जब भी एल नीनो कंडीशन होती है तो भारत में जो वर्षा है उसमें जो है कमी देखी जाती है। हालांकि कुछ वर्ष ऐसे भी देखे गए हैं जब एल नीनो के बावजूद भी काफी अच्छी वर्षा भारतवर्ष में देखने को मिली है। इसमें हमें यही समझने की जरूरत है कि जब ला नीना कंडीशन होती है तब भारतवर्ष में जो वर्षा है उसका जनरल ट्रेंड अगर देखें एक तरह जनरली हम बात करें उसके बारे में तो वो वर्षा के लिए सहायक सिद्ध होता है, जबकि एल नीनो कंडीशन यानी कि जब समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो वो वर्षा के लिए नेगेटिवली काम करता है, नकारात्मक रूप से उसको प्रभावित करता है। लेकिन जो मानसून सिस्टम है वो अपने आप में बहुत रहस्य सिस्टम है, इसमें सिर्फ एक फैक्टर का जो है यानी कि एक जो इवेंट है जैसे एल नीनो सिर्फ इसका ही असर नहीं होता है, बहुत सारे अन्य कारक हैं जो भारत के मानसून को प्रभावित करते हैं, जैसे कि इंडियन ओशन डायपोल यानी कि जो हमारा जो हिंद महासागर में जो डायपोल स्थिति बनती है उसका भी असर होता है कई बार। तो सिर्फ एक कारक से भारत के मानसून का जो है डायरेक्शन तय नहीं होता है, लेकिन एल नीनो को इन जनरल देखा जाता है तो ये एक काफी ज्यादा जो है प्रभाव डालता है भारत के मानसून के ऊपर। अगर हम बात करें 2026 की यानी कि जो आने वाले जो अभी मानसून का सीजन हमारा शुरू ही हो गया है लगभग, इसमें तो अभी जो एल नीनो की कंडीशंस है वो अभी न्यूट्रल कंडीशंस से एल नीनो की वीक कंडीशंस की ओर जो है ट्रांजिशन चल रहा है, यानी कि मानसून के दौरान एल नीनो कंडीशंस जो है डेवलप करने के गाइडेंस जो है सारे मॉडल दिखा रहे हैं और यही पूर्वानुमान भी दिया गया है, यानी कि मानसून के दौरान एल नीनो कंडीशंस जो है वो डेवलप हो सकती है। प्रशांत महासागर में समुद्र की जो सतह तापमान है वो असामान्य रूप से गर्म होगा जो कि हवाओं के रुख को निर्धारित तौर पर प्रभावित करेगा, और हम इसका असर भी मौसम की जो मानसून की जो वर्षा है इसमें भी हमें देखने को मिल सकता है। और इसी को देखते हुए यही कारक रहा है कि जो वर्षा का पूर्वानुमान है वो बिलो नॉर्मल यानी कि सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान में इसकी बहुत बड़ा योगदान रहा।
1: जी डॉक्टर डबास, उन किसानों के लिए आप क्या कहेंगे जहां पर जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल संचयन को लेकर कुछ किसान काफी सजग रहते हैं, उन किसानों को किन व्यवहारिक उपायों पर ध्यान देना चाहिए?
0: ये जो हमारे किसान हैं जिनके पास में जल सिंचाई की बहुत अच्छी विधियां हैं और साथ साथ में सजग हैं, इनको मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले तो एक अच्छी किस्म का चुनाव करना है, बीज का सही समय से प्रबंध करना है। प्रबंध करने के बाद में हमारे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि कुछ पोषक तत्व वैसे होते हैं जो हमारी फसल को सूखे से लड़ने की भी ताकत देते हैं और उसकी जड़ों के विकास को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जिससे कि उनको फायदा होता है। तो एक संतुलित मात्रा में खाद का उपयोग करना है, उसमें केवल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ही नहीं करने, साथ साथ में फास्फोरस, पोटास और दूसरी चीजों का भी देख करना है। और जो सरकार ने हमें एक योजना दी है सॉयल टेस्टिंग की, उसके आधार पर अगर खाद का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद आती है कि हमें किस्म का चुनाव, क्योंकि इस समय हमें उस किस्म का चुनाव करना है जो जल्दी पक्के तैयार हो, जिसका अनाज भी अच्छा हो, साथ साथ में कम पानी ले। हमें विधि भी वो चुननी है कि उसका प्रॉपर प्लांट पॉपुलेशन हो। कई बार हम जब बुआई करते हैं तो बीज की मात्रा ज्यादा होती है लेकिन पौधे काफी सघन हो जाते हैं, तो हमें अगर पौधों की संख्या सही रखेंगे तो कम पानी में हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। और साथ साथ में खरपतवारों का प्रबंध बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान ले करता है, क्योंकि खरपतवार काफी मात्रा में बीमारी भी फैलाते हैं, कीड़े भी फैलाते हैं, साथ साथ में पानी का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो अगर हम खरपतवार का प्रबंध कर लेते हैं उससे भी बहुत बड़े पानी की बचत होती है और साथ साथ में हमारी मिट्टी का अच्छा रहता है। और निराई गुड़ाई समय पर होना बहुत ही जरूरी है। और इसके साथ साथ में हमें जो पानी हमारे पास है वो सही टाइम है, मोस्टली अगर आपके पास अपनी इरिगेशन फैसिलिटी है तो पानी का सुबह और शाम इस्तेमाल करना है। और क्रिटिकल स्टेजेस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि बाली निकलनी है, बाली आने वाली है, उग रहा है या फुटाव चल रहा है। और कई बार कुछ किसान भाई ज्यादा खेत में पानी खड़ा रखते हैं, उससे नुकसान भी होता है खासकर धान की फसल में। तो अगर हम पानी सूखने दें और फिर पानी लगाएं तो उससे लगभग 30-35% पानी की बचत होती है और पैदावार भी अच्छी आती है, कीट और बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो मैं उन किसानों को ये कहना चाहूंगा कि उसका उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से मक्का की फसल में भी कुछ खास क्रिटिकल स्टेजेस होती है, उनका विशेष ध्यान रखना है, खासकर जब उसमें फुटाव हो, जब फसल बने, उसमें फ्लावरिंग आए, तो उस समय पानी की कमी ना हो तो बहुत अच्छा रहता है। और खरपतवार प्रबंधन यहाँ भी करना है और साथ साथ में मक्का के में कीट प्रबंधन पे भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आजकल एक फॉल्स आर्मी वार्म आ रहा है क्यों काफी नुकसान करता, तो उसको हम समय से पहले अगर टैकल कर लेंगे तो हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। साथ साथ में जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक लगातार संपर्क में बने रहें और जितना भी अधिक से अधिक मात्रा में देसी खाद का प्रयोग करेंगे उससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ेगी और साथ साथ में मिट्टी का जब उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो हमारी फसल अच्छी पैदा होगी। तो वह हमें विशेष ध्यान रखना है और संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग करें, किसी भी हालत में घबराएं नहीं और हमें अपने किसान पर पूरा विश्वास है कि किसान हमारा बहुत सक्षम है, सरकार की योजनाएं अच्छी हैं और आपका जो विस्तार तंत्र है खासकर मास मीडिया है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल,
0: और साथ में जो हमारे मौसम विभाग का जो सहयोग है तो इसके सहयोग का हम इसकी सूचनाओं का जानकारी का उपयोग करते हुए मुझे लगता है कि हम स्थिति में बहुत अच्छी तरह उभर के आएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे।
1: जी डॉक्टर श्रीवास्तव, एक और बड़ा बदलाव ये दिख रहा है कि अब कम दिनों में बहुत भारी बारिश जिसे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स कहते हैं वो हो जाती है और शुष्क दिन यानी ड्राई स्पेल्स बढ़ रहे हैं। मौसम विज्ञान इस नए पैटर्न को कैसे देख रहा है?
2: तो इसमें हमें ये बात समझने की जरूरत है कि जैसे जैसे धरती का एटमॉस्फेयर का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है तो इसके जो मॉइस्चर को होल्ड करने की यानी कि ये कितनी अपने अंदर पानी को हवा के अंदर ऐसा वेपर या नमी को अपने अंदर रख सकता है वो भी बढ़ जाता है। हर एक डिग्री राइज पर लेते ह्यूमिडिटी है तो रिटेन करने की कैपेसिटी करीब करीब 7% जो है बढ़ जाती है। यानी कि अभी जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो अवेलेबिलिटी है पानी की वाटर वेपर की वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और जब इस तरह के जो गर्म एनवायरमेंट की कंडीशंस होती है ये लगातार कन्वेक्टिव एक्टिविटीज को जो कि सडनली गर्मी की वजह से एकदम से क्लाउड डेवलपमेंट को और एसोसिएटेड उसके साथ में बहुत ही इंटेंस बारिश को जो है काफी ज्यादा सहायक होता है और क्योंकि ऑलरेडी इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है एटमॉस्फेयर में तो इस तरह की जो घटनाएं हैं जहां पर बहुत सारी वर्षा एक बहुत ही सीमित समय में हो जाती है और उसके बाद में काफी कई दिनों तक फिर ड्राई स्पेल देखने को मिलता है, इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है। तो जैसे कि ये सब मौसम बदलाव हो रहे हैं इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए ताकि जो भी ये वर्षा है एक तो ये इकट्ठा इतनी वर्षा हो रही है ये जो पानी जो हमें मिल रहा है इसका ये रन ऑफ के जरिए इसका थोड़ा वेस्टेज ना हो और इसको हम सदुपयोग कर सके तो इसका एकत्रित करने के लिए भी कुछ ना कुछ उपाय पहले से बनाए रखे।
1: जी डॉक्टर डबास, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छा मॉनसून ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर को कैसे बढ़ाता है और इसका असर ट्रैक्टर, एफएमसीजी और अन्य उद्योगों पर कैसे पड़ता है।
0: जैसे ही किसान की आमदनी बढ़ती है, किसान को अच्छी फसल मिलती है, किसान पहले से तत्पर होता है क्योंकि उसको और आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, अपने सपने देखता है तो सपनों वो चाहता है कि उसके पास अच्छी मशीनरी होनी चाहिए, अच्छी तकनीकियां होनी चाहिए और आगे के मौसम को रक्षा करने के लिए उसके पास सभी संसाधन होने चाहिए तो वो पैसा जो है बाजार में लगाता है, बाकी चीजें बाजार में नहीं लगती हैं। तो जब भी किसी का उत्पादन बढ़ता है किसान को पैसे ज्यादा जाते हैं तो आपके जितने भी ट्रैक्टर हैं या मशीनरी है या फार्म इक्विपमेंट है या सीड है या दूसरी चीजें हैं और इसके साथ साथ में हमारे जो उपभोक्ता को भी अच्छी किस्म का भोजन मिलता है और जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है तो देश का नाम होता है क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कोई कम से कम 20 साल से हमारी एक्सपोर्ट धान बासमती धान में हम आप पूरे वर्ल्ड में एक बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं और इससे और भी अच्छा करने की संभावना है क्योंकि किसान हमारा सक्षम है, हमारी खेती में भी जान है और गवर्नमेंट भी चाहती है, गवर्नमेंट ने काफी अच्छी परिस्थितियां बनाई है जिससे कि किसान एक्सपोर्ट कर सके। जो हमारे भारतीय किसान संगठन बने हैं, किसान उत्पादक संगठन बने हैं वो भी इस तरफ काफी आगे बढ़ रहे हैं और सरकार ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि कौन से जिले से कौन सा प्रोडक्ट की ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, उसमें क्या क्या प्रोसेसिंग हो सकती है, कैसे हम उसको जिले को सक्षम कर सकते हैं। तो सरकार की जो योजनाएं हैं, किसान की मेहनत है और जो भी किसान का उत्पादन बढ़ता है वो सारा का सारा बाजार में आता है, जब बाजार में आता है तो पूरे देश में रौनक आती है। तो एक किसी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो भी पैसा गवर्नमेंट अलॉट करती है तो उसका फायदा सबसे ज्यादा होता है। ये हमारे जितने भी अर्थशास्त्री कृषि अर्थशास्त्री हैं उन्हें काफी प्रेजेंट किया गया, अगर हम कृषि में 1 रुपया खर्च करते हैं तो हमारी आमदनी और बाकी क्षेत्रों से कहीं ज्यादा होती है। तो इसको देखते हुए मैं कहूंगा कि कृषि के क्षेत्र में सरकार को और अधिक ध्यान देने की जरूरत है और किसान को और अधिक सक्षम बनाने की जरूरत है और साथ साथ में हमें ये देखना मंडी में भाव क्रैश ना करे। जब किसान कई बार मेहनत करता है, अच्छा उत्पादन लेता है तो जब भाव क्रैश कर जाता है तो किसान टूट जाता है। तो सरकार को जब भाव अधिक होते हैं तो उसको तो कम करने की कोशिश करती है लेकिन सरकार को ये भी कोशिश करनी है कि किसान को उत्पादन लागत से अधिक पैसा मिले और ये खाली हमारी वो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाली फसलें ही नहीं बल्कि जो सब्जियां हैं, फल हैं, फूल हैं क्योंकि देश को हर चीज की जरूरत पड़ती है तो हमें सरकार को उस पर भी थोड़ा सजग होने की जरूरत है।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, दुनिया भर की तकनीकों पर चर्चा होती है, जब कोई भी नए गैजेट्स मार्केट में आते हैं तो हम चर्चा करते हैं कि अमेरिका में ये चल रहा है, यूरोप में ये चल रहा है, दुनिया के दूसरे देशों में ये चल रहा है। मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में आपसे समझना चाहेंगे कि दुनिया के अलग अलग देशों में किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और भारत ने पिछले एक दशक में पूर्वानुमान की तकनीकों में किस तरह का बदलाव किया है और उसके क्या प्रभाव दिख रहे हैं, बहुत संक्षेप में।
2: जी देखिए, पहले तो भारत मौसम में अगर हम पूरे वैश्विक पर बात करें तो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है वो ऑब्जर्वेशन के क्षेत्र में हो रहा है। अभी जितने भी तरह तरह के मैकेनिज्म है जो मौसम को ऑब्जर्व करने के, उसमें काफी ज्यादा जो वृद्धि हो रही है। इसको साथ साथ में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है एटमॉस्फेरिक प्रोसेस को लेकर के वातावरण में एटमॉस्फेयर में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे न्यूमेरिकल मॉडल्स हैं जिनको हम हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स पर रन करते हैं और हमें गाइडेंस मिलता है जिसके बेसिस पर हम लोग फोरकास्ट इशू करते हैं, तो इसमें भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। जहां तक बात है भारत मौसम विज्ञान विभाग की, तो पिछले 10 वर्षों में आप देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जर्विंग नेटवर्क है, ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है, बहुत ज्यादा उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। जो हमारे सैटेलाइट सिस्टम्स है उसमें बढ़ोतरी हुई है, बहुत उन्नत हुए हैं। साथ साथ में रडार है, उसका कवरेज भी काफी बढ़ गया है। इसके वजह से जो ये अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे जो काफी इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी को, उसको भी ट्रैक करने में काफी ज्यादा रियल टाइम में मदद मिलती है। इसके साथ साथ जो मॉडल्स हैं, जो न्यूमेरिकल मॉडल्स हम लोग यहाँ रन कर रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में भी, और साथ साथ में जो अन्य संस्थान है भारत सरकार के, वहां पर भी वो जो मॉडल्स रन किए जा रहे हैं उसमें काफी ज्यादा रिजोल्यूशन में परिवर्तन हुए, इम्प्रूवमेंट हुआ है, और काफी हाई रेजोल्यूशन मॉडल जो फ्रेमवर्क है वो डेवलप किए गए हैं और उनके बेसिस पे जो गाइडेंस मिल रही है उसको उपयोग करके पूर्वानुमान दिया जा रहा है।
1: जी।
2: इसके साथ साथ में AI का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल अब शुरू हो गया है, और AI ML को यूज करके, यानी कि जो कृत्रिम जो इंटेलिजेंस है इसका भी काफी भरपूर उपयोग किया जा रहा है ताकि पूर्वानुमान को और अधिक सटीक बनाया जा।
1: जी हाँ बिल्कुल, मानसून भारत के लिए केवल एक मौसम नहीं बल्कि जीवन, जीविका और विकास का आधार है। इसकी हर बूंद खेतों में अन्न, गांव में अवसर और अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा लेकर आती है। आज की चर्चा से ये साफ है कि मानसून का पूर्वानुमान केवल बारिश का अनुमान नहीं बल्कि कृषि उत्पादन, ग्रामीण रोजगार, बाजार की मांग और देश की आर्थिक गति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेतक है। साथ ही बदलती जलवायु परिस्थितियों में वैज्ञानिक पूर्वानुमान, आधुनिक कृषि तकनीकों और जल संरक्षण के उपायों का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। डॉक्टर श्रीवास्तव और डॉक्टर डबास, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे मॉनसून पूर्वानुमान कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और यूट्यूब चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। चर्चा का विषय है

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दे दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम विहाने से भेंट की। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सभ्यतागत संबंध है, जो बौद्ध धर्म और रामायण की साझा विरासत में परिलक्षित होते हैं। उन्होंने कहा कि राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ का उत्सव भारत लाओस द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके कुमार शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जाँच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आस पास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही है जिसमें राई बराबर भी वायलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा, एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दे को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हराकर इंडोनेशिया ओपन के दूसरे दौर में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक भारत अमेरिका को पीछे छोड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ने सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और करणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। ये विकास मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे से क्षमता वृद्धि को रिकॉर्ड गति दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
0: भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। श्री गोर ने दोनों देशों के रिश्तों को आधुनिक समय की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारियों में से एक बताया। अमेरिका का एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल इन दिनों नई दिल्ली में भारतीय अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर रहा है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। भारतीय पक्ष का नेतृत्व वाणिज्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव दर्पण जैन कर रहे हैं। श्री सर्जियो गोर ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को आधुनिक समय की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारियों में से एक बताया। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिगेज गोमेज 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सुश्री डेल्सी रोड्रिगेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाइयां, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटो सेक्टर से जुड़े विभिन्न स्थलों का भी दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना और सहयोग के नए अवसर तलाशना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध है। इसका आधार ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग, व्यापार और विकासशील देशों के प्रति साझा प्रतिबद्धता है। विश्व दर्पण के लिए अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अजीत वर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोमविहाने से भेंट की। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सभ्यतागत संबंध हैं, जो बौद्ध धर्म और रामायण की साझा विरासत में परिलक्षित होते हैं। उन्होंने कहा कि राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ का उत्सव भारत लाओस द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन की विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास मामले मंत्री यवेट कूपर 2 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। सुश्री कूपर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। कल शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी संघर्ष आज और तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले किए।
3: एक ड्रोन हमले में कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के मुख्य यात्री टर्मिनल को नुकसान पहुंचा। हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 63 लोग घायल हो गए। भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिक की मौत पर शोक व्यक्त किया है। दूतावास ने कहा कि वह कुवैती अधिकारियों के साथ मिलकर हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए आनंद पाठक।
0: यूक्रेन ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर के बाहरी इलाकों में ड्रोन हमला किया है। यह हमला रूस में एक बड़े आर्थिक मंच की शुरुआत से कुछ घंटे पहले हुआ। रूस के अधिकारियों के अनुसार वायु रक्षा प्रणाली ने रात भर में 59 ड्रोन को मार गिराया। हमले का असर सेंट पीटर्सबर्ग के 3 जिलों में देखा गया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस इस हमले का जवाब देगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार को इस आर्थिक मंच में भाषण देने वाले हैं। इसमें 130 देशों के हजारों प्रतिनिधि शामिल होंगे। हमले के कारण मोबाइल इंटरनेट सेवाओं में बाधा आई और पुल्कोवो हवाई अड्डे को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। पड़ोसी देशों लातविया और एस्टोनिया के कुछ हिस्सों में भी हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने कंबोडिया में UPI भुगतान सुविधा आरंभ करने के लिए कंबोडिया के प्रमुख वाणिज्यिक बैंक ACLEDA बैंक के साथ साझेदारी की है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि पहले चरण में लाखों भारतीय यात्री 45 लाख से अधिक कंबोडियाई व्यापारियों को सुगमता से QR भुगतान कर सकेंगे और इसके बाद अगले चरण में दो तरफा भुगतान सुविधा स्थापित की जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि UPI अभी सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, कतर और श्रीलंका सहित 8 देशों में स्वीकार किया जा रहा है। श्रीलंका में भारतीय कंपनियों को महत्वपूर्ण अनुबंध प्राप्त हुए हैं। इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और मजबूत हो रहा है। भारतीय ऑयल कॉरपोरेशन की श्रीलंका स्थित कंपनी लंका IOC को सपुगासकंदा पावर स्टेशन के लिए वर्ष 2026-27 में 3,16,000 लीटर लुब्रिकेटिंग ऑयल की सप्लाई का ठेका मिला है। इस ठेके की कीमत लगभग 39 करोड़ श्रीलंकाई रुपए है। भारत की RS इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को श्रीलंका के मुल्लीकुल्लम विंड पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाने का ठेका मिला है। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 50 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेते फ्रेडरिक्सन को तीसरी बार पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत और डेनमार्क आपसी विश्वास, समान मूल्यों और सतत भविष्य के लक्ष्यों को साझा करते हैं। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी पुरुष सिंगल्स में चीन के वेंगहोंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वहीं मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की भारतीय जोड़ी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने चीनी ताइपे के हु लिंगफांग और यांग पोहान को मात दी। पुरुष सिंगल्स में HS प्रणॉय, महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा, पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी प्रतियोगिता से बाहर हो गए। संयुक्त राष्ट्र के मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले महीनों में मध्यम से अलनीनो के तीव्र होने की आशंका है। इससे वैश्विक तापमान में तेजी और मौसम से जुड़ी घटनाओं में वृद्धि को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। विश्व मौसम संगठन के अनुसार मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान में बढ़ोतरी इसका कारण है। जून से अगस्त तक दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान का पूर्वानुमान लगाया गया है। ये स्थिति नवम्बर तक रह सकती है। संगठन की महासचिव सेलेस्टे साउलो ने कहा कि देशों को अलनीनो की संभावना के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में भारत अमेरिका को पीछे छोड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बना। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस 5 दिन की यात्रा पर भारत पहुंची। कुवैत हवाई अड्डे पर ईरान के हमले में एक भारतीय की मौत। खाड़ी संकट बढ़ने से तेल की कीमतों में उछाल। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में प्रमुख आर्थिक मंच के आयोजन से पहले यूक्रेन का ड्रोन हमला। और बैडमिंटन में भारत के आयुष शेट्टी ने चीन के वेंग होंग यांग को हराकर इंडोनेशिया ओपन के दूसरे दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with World News. The headlines. India becomes world's second largest solar growth market, surpassing US in annual solar capacity additions. Venezuela's acting president Delcy Rodriguez arrives in India for a five-day visit. Iran hits Kuwait airport, killing one international. Oil prices jump amid escalating Gulf crisis. Ukrainian drone strike St. Petersburg before the Russian city hosts major economic forum. And in badminton, India's Ayush Shetty enters second round of Indonesia Open Super 1000